0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका दाशी आपके साथ वेलकम बैक टू द शो जी। और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ख्याल के साथ शुरुआत करते हैं आप कि जिंदगी में ना मैंने ये डिसाइफर किया है, ये मुझे समझ में आया है कि हमेशा परमिशन मत मांगो, बाद में फॉरगिवनेस मांग लो, है ना। कि मतलब कुछ भी करने जा रहे हो ना तो अगर किसी से बोलोगे मैं ऐसा कर लूं क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करना, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो उसको कर दो चीज को और उसके बाद ऐसा करो, अगर वो सही हो जाए तब तो ऑफ कोर्स हर कोई तारीफ करेगा क्योंकि कोई सही चीज के तो खिलाफ जाना नहीं चाहता, है ना। लेकिन अगर वो गलत हो जाए तो बोलो ओहो अरे आई एम वेरी सॉरी यार, अरे वेरी सॉरी यार। हमेशा परमिशन मत मांगो, फॉरगिवनेस मांगो बाद में। यह गाना चंगेजी का शेर सुनो, कहते हैं कि गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं। अमा जब ऊपर वाले को लोगों ने ये फंडा चिपका दिया तो नीचे वाले तो चिल ही रहेंगे यार, मैं बता रहा हूं। डू नॉट आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. La vid bala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Kaun?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई तू इतनी धीरे से बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से। पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं, 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था।
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन की थी।
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से, और हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
3: जाना जरूरी है?
4: कहाँ जा रहे हो?
3: दुबई।
4: अच्छा तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
4: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
3: ठीक है ठीक है,
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
3: आपने सही कह रहे
4: हैं। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ।
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
3: करवा देना भी है
4: आपसे। मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे।
3: सॉरी सॉरी सॉरी।
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
3: Okay, okay.
4: I love you.
3: I love you too.
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका दाशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर मजहर इमाम साहब से। मजहर इमाम साहब दिल्ली में रहे और 1928 में इनका जन्म हुआ, 2012 में चल बसे और आधुनिक शायरों में बहुत विख्यात हुए। मजहर इमाम साहब का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है जो कि इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से इंसान जब अपने जिंदगी में खुश हो जाता है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे लोग की क्या दिक्कतें हैं। शेर लिखते हैं कि हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे। दरीचे मतलब जो ओपनिंग होती है, जो दरवाजे होते हैं, छोटा सा दरवाजा होता है, ठीक है। हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे, बाहर है कयामत का जो मंजर तो हमें क्या। वाह, और कितने सटीक तरीके से मजहर साहब ने बता दिया कि भाई ऐसे ही होते हैं लोग। लोग जब अपने घर के अंदर सब कुछ ठीक होता है तो बाहर जो भी चल रहा हो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे, बाहर है कयामत का जो मंजर तो हमें क्या। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? मुझे तो काफी दिखी। बहरहाल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ। It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
4: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
3: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
4: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
3: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और मेरे किसी बड़े ने कहा था ना कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। आप क्या मांग रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, जितना ये जरूरी है उतना ही और शायद उससे थोड़ा ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे वो मांग रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं। जैसे अगर आप किसी से कहें कि अरे हंसते क्यों नहीं हो यार, हंसा करो, वो पलट के कह देगा अपने काम से काम का नहीं मतलब रखते हो, रखा करो, है ना। लेकिन अगर आप उससे ये कहें कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो, कितना एक मासूम, कितना एक प्यारा तरीका है ये कहने का कि यार थोड़ा मूड को अच्छा करो, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा लाइट हो जाओ, है ना। बस यही बात होती है कि कहने का जो तरीका है अब्दुल हामिद आदम साहब ने क्रैक कर लिया कि भाई कैसे कहना है कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी आपको नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड और ये जो नगमा है ये मेरे दिल के बड़ा करीब है क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह जी ने इसे गाया है इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स एंड आई एम सिंगिंग इट जस्ट फॉर यू तुमको देखा तो ये ख्याल आया

0: ऐसे ही और नगमों गजलों किस्सों के लिए स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.
1: क्या कहा?

0: on Mirchi. It's hot. It's 8 o'clock. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: मिर्ची महफिल में आपके दाशी है आपके साथ एंड इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड दोस्त. एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपका जिंदगी का कोई भी वक्त किस तरह से गुजरेगा. अब आप अमीर कजलबाज साहब का एक शेर देखें जो कि परफेक्टली ये डिफाइन करता है. ठीक है, कहते हैं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है. अब आप समझे क्या कह रहे हैं कि मतलब जिस जगह पे आके लोग ये बोलते हैं कि यार अब बस बहुत हुआ, उस जगह पे अगर आप ये कह दें कि नहीं अभी तो शुरुआत हुई है दोस्त, अब देखता हूं ये कैसे नहीं होती चीज, या फिर कैसे मैं इसी जगह पे रहता हूं, या फिर यू नो, इतना मोटिवेशनल शेर लगा मुझे ये. लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है. ये शेर सुनाइए उस इंसान को जो कहता है कि अरे उर्दू शायरी में तो केवल रोमांस की बातें होती. नहीं दोस्त, रोमांस की बातें छोड़िए, आप देखिए कितना खतरनाक मोटिवेशन है. जिम जाओ भाई, लंगड़ा आदमी मैराथन दौड़ने चला जाए ये शेर सुनकर. बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Navid wala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Hello, bhai. Wrong number se baat kar raha hai. Wrong number se.
3: Nahi, kaun baat kar raha
4: hai? Pehle bata, wrong number se baat kar raha hai.
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई। रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
4: ओ मेरी बात
3: कौन
4: सुन।
3: बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया।
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
3: वाली बातें कर रहा
4: है? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर,
4: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू
3: यार।
5: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब मौका है दस्तूर है
2: कविता कॉर्नर
1: कि आप कथाशी सुनाए आपको आज की कविता हमारे कविता कॉर्नर में और आज की कविता आ रही है केदारनाथ अग्रवाल साहब की जानिब से और कविता का उन्वान है कविता का नाम है दुख ने मुझको लिखते हैं कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा दुख ने मुझको जब जब तोड़ा मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा जहां गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया और लिटरेचर होता किस लिए है यार आर्ट किस लिए होता है मेरे ख्याल से हमको मुश्किल समय में एक सहारा देने के लिए एक कंधा देने के लिए मुश्किल समय में भी हमें ये बताने के लिए कि ये मुश्किल समय सिर्फ हमारे साथ नहीं गुजर रहा और भी बहुत आए गए जिन्होंने ऐसा ही मुश्किल समय देखा है ऐसा ही मुश्किल समय जिया है और आप भी इसे निभाई ले जाओगे स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: इट्स 9:30 पीएम. मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: क्या आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपको नजर। और दोस्त, ये जो इंस्टाग्राम जनरेशन है ना, ये जो सोशल मीडिया जनरेशन है, हम सब की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे ना एक चीज हो गई है कि इंसान अपनी सच्चाई सोशल मीडिया पे नहीं डालता है, पूरी सच्चाई तो नहीं डालता है ना, वो अपने अच्छे पल डालता है, वो अपने हैप्पी पल डालता है। और उसकी फीड देख के ऐसा लगता है कि यार इसकी जिंदगी में तो मजे ही मजे हुए जा रहे हैं, मतलब क्या ही सीन है इसका। इससे मुझे वो शेर याद आता है कयूम नजर साहब का, कहते हैं कि पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा। शेर देखें आप कि पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा, देखो तो शहर शहर है मेला लगा हुआ। कितना सटीक है ना ये, मतलब हमारी पूरी सोशल मीडिया जनरेशन का डिस्क्रिप्शन। पूछो तो एक एक है तन्हा सुलग रहा, देखो तो शहर शहर है मेला लगा हुआ। सो ट्रू। तभी भाई साहब सोशल मीडिया देख के अपनी जिंदगी को कभी जज मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता यार उस बंदे की पर्सनली लाइफ में क्या चल रहा है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका दाशी आपके साथ। इट्स हॉट, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, और हमारे वक्त के लिखने वालों में से मेरे एक बड़े पसंदीदा शायर हैं अब्बास ताबिश साहब। उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गजल आपके नजर कर रहा हूं, क्योंकि मैं बस आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। है ना खूबसूरत, इनकी लेखनी और पढ़िएगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और तब तक के लिए नज़र है अगला नगमा, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Kaun?
4: Hello, Vipin.
3: कौन बोल रहा है?
4: इस्ता, इस्ता, इस्ता, इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
3: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
4: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
3: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
4: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी. फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
3: अभी पहले किया था.
4: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
3: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
4: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
3: जाना जरूरी है.
4: कहाँ जा रहे हो?
3: नहीं, दुबई.
4: अच्छा, तो दुबई जाना है?
3: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
4: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
3: हाँ ठीक है ठीक है.
4: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
3: आपने सही कह रहे.
4: हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
3: बताओ.
4: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ, पापा हैं बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
3: मैं तो पागल है क्या?
4: चिल्लाओ मत. ठीक है, मैं रखता हूँ.
3: करवा देना भी है
4: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
3: सॉरी सॉरी सॉरी.
4: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: ए पगला,
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: और माँ बाप के सिवा ऐसा सैक्रिफाइस आपके लिए शायद ही कोई और करे। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और परवीन शाकिर साहिबा का एक बड़ा उम्दा शेर पढ़ा हाल में मैंने और मेरा बहुत मन है कि आपसे उसको शेयर करूं, आपको भी सुनाऊं। कहती है कि वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबा में है। आय हाय क्या शेर है, मतलब सैक्रिफाइस का जो रुतबा है ना वो है इसमें कि वरना ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबा में है। कौन होगा ऐसा जिंदगी में जो आपकी छाओं के लिए धूप में रहेगा? मुझे नहीं लगता हमारे माता पिताजी के अलावा ऐसा कोई भी होगा। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप एंड यू कैन टॉक टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI। अगर आप डिसएग्री करते हैं बिल्कुल वी कैन टॉक अबाउट इट। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: आपको नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड, और ये जो नगमा है ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह जी ने इसे गाया है। इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स एंड आई एम सिंगिंग इट जस्ट फॉर यू। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।

समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बात आप मुझसे करना चाहें तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। बने रहे मिर्ची पर, आपका ताशी था आपके साथ, इट्स हॉट।

0: कहते हैं आरडी बर्मन छोटे होते जब रोते थे तो पांचवें सुर में रोते थे, सारे गामा पा पा वाला जो सुर होता है उसमें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आरडी बर्मन दी आरडी एक्स ऑफ म्यूजिक, और वो जिस भी सुर में रोते हो, जो असला बारूद उन्होंने म्यूजिक का क्रिएट किया है ना, वो फिनोमिनल है। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने अपने पहले सुपरहिट गाने, इस ट्रेंड सेटिंग गाने के बारे में क्या कहा था।
1: ये एक कमाल चीज है, इतनी बड़ी पिक्चर का पहला गाना ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, वो गाना दोनों ने मिलकर डुएट गाना गाए, और वन टेक ओके होता है लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ होगा कोई गाना। ये है साहब कमाल की किस्सा जो हमारे लाइफ में एक यादगार सी चीज है। नासिर, आई टेल यू वन थिंग, दिस म्यूजिक इज गोइंग टू ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक है, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ऐसे गिर पड़ा गया, बाप रे बाप इतनी बड़ी बात बोल दी, और कौन कह रहा है, शम्मी कपूर कह रहा है, तो मुझे ये तो मालूम नहीं साहब कि ट्रेंड सेट हुआ ना क्या हुआ ना हुआ, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि उसके बाद काफी लोग जैसे ब्रास ओरिएंटल सॉन्ग्स जिसको कहते हैं, थोड़ा जैज टाइप की म्यूजिक, थोड़ा सा उस टाइप की म्यूजिक, रॉक टाइप की म्यूजिक, वो इंडस्ट्री में काफी लोग ने शुरू किया। डिफरेंट
0: तो सुन लेते हैं ट्रेंड सेटिंग गाना ऑन आरडी बर्मन स्पेशल पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास ग्लासेस क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो बट मैं ध्यान रखता
3: हूँ थोड़ा ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हाँ
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: क्या हुआ क्या था भाभी से आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखी हुई आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
3: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
2: मजे आ रहे हैं
3: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
2: अरे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
8: एक ही होता है
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली

0: धोख दूं पाए लागू आरडी बर्मन साहब के। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाना हैंड्स डाउन उनका वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस है, सत्ते पे सत्ता का ये गाना, जिसमें बहुत सारी आवाजों में खुद आरडी बर्मन की आवाज भी थी एज अ सिंगर। और उससे जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ न कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले। मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था, यमा यमा जो गाना किया था, जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला खराब। तो रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आज शूटिंग के लिए गा दो, अब बाद में हम डब करेंगे। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज का टाइम आया, बोले कि रफी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूं, तो प्लीज ये हाँ जरूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन इट्स सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए, तो वो वैसे का वैसे गाना रह गया।
0: तो चलिए इन दोनों लेजेंड्स को याद कर लेते हैं ये गाना सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: बहुत हैरत की बात है कि आरडी बर्मन जैसे म्यूजिशियन को अपने करियर में कुछ खास अवार्ड्स नहीं मिले। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में ऐसा कहा जाता था कि इन अवार्ड्स में काफी मैनिपुलेशन होता था या बायस भी होता था, और इन सब चक्करों में आरडी बर्मन काफी सीधे साधे भोले भाले रह जाते थे। इनके ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया जाता था कि ये मॉडर्न म्यूजिक वाले गाने ज्यादा बनाते हैं, क्लासिकल वाले नहीं। पर ये बंदा तो मस्त मलंग था, मन की करता था। इस बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था।
1: मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सिखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिंझोटी में मैं और मालकोस में ये कोशिश की, ऐसा तो हम कहते नहीं। हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते हैं। वो कभी कभी राग में भी आ जाता है, कभी राग भ्रष्ट भी हो जाता है।
0: राग भ्रष्ट हो जाता है कितने क्यूट है यार। एक बार सुनिए अपनी टूटी फूटी हिंदी बोलने के बारे में एक बार क्या कहा था इन्होंने।
2: और माफ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्योंकि मैं बंगाली हूँ।
0: वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो जुबान बोलते थे वो सबको समझ में आती थी, प्यार और संगीत की। पुरानी जीन्स पर आज आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली

0: ये जोड़ी जैसी जमी थी ना, ऐसी जोड़ी कोई जम नहीं सकती है फिर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, द लेजेंडरी जोड़ी ऑफ आर डी बर्मन एंड आशा भोसले जी। आशा भोसले जी के एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था कि आर डी उनके लिए क्या थे।
1: एक तो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा बहुत अच्छा फ्रेंड और बड़ा ही मूडी फ्रेंड। उसकी एक छोटी सी बात बोलते उसके सामने चाय रखा तो पहले उसमें पानी डाल देता था और फिर पीता था। तो मैं हमेशा सोचा करती थी फिर चाय क्यों मंगा, ऐसे अच्छा गर्म पानी मंगाता या ठंडा पानी मंगा। लेकिन ऐसे उसके अजब मूड थे, सिगरेट जला के रखेगा वो सिगरेट पूरी जल जाएगी वहीं पड़ी पड़ी, फिर दूसरी जलाएगा, ऐसे सिगरेट जलाता रहेगा। लेकिन सोच में इतना मूडी था। पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन ये गाना कैसे है, ये सुन ये साउथ अमेरिकन म्यूजिक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अभी ये सिंगर, और इसमें हम पूरी रात इसके निकल जाती थी। तो मैं बोलती थी पंचम मेरे को कल गाना रिकॉर्ड करना है, तुम तो सोते रहोगे लेकिन मेरे को बैठे बैठे गाने सुनना, फिर से लगाना फिर से लगाना।
0: तो फिर से लगा देते हैं ये आइकॉनिक गाना आशा भोसले आर डी बर्मन की आवाज में, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, कारवां फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: आरडी वर्मन 1961 से फिल्मों में इंडिपेंडेंटली म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन सक्सेस उनके हिस्से में आया 1966 में विद तीसरी मंजिल का म्यूजिक। क्या ही आइकॉनिक ट्रेंड सेटर, फिनोमिनल म्यूजिक है वो। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कैसे उनको इस फिल्म के म्यूजिक का ऑफर मिला और उसके बाद क्या क्या मुश्किल आई।
1: एक दिन क्या हुआ, मिस्टर नासिर हुसैन जी का नाम है, उन्होंने मुझे खबर दी, कहने का आप आइए मुझे सुनाइए आपका कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो। उस जमान बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे, गया जाके उनको सुनाया, हमारे पास जो जो गाना था ट्यून सुनाया, ऐसा कुछ किया तो उनको बहुत पसंद आया। क्या था, उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब, कुछ गड़बड़ हुआ, वो पिक्चर उन्होंने किया नहीं। उसके बाद पता लगा कि शम्मी कपूर हीरो हो गया। अब शम्मी कपूर हीरो हो गया तो शम्मी कपूर का तो पूरा किंग था ना, शंकर जी थे, जयकिशन जी थे, सब थे, तो मैं समझा कि मेरा तो पत्ता कट गया। नासिर साहब ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है ना, आपको जो जो गाना है वो आपको शम्मी कपूर को सुनाना पड़ेगा। तो शम्मी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सेटिंग में, आए बोले आए पंजाब सुनाओ। तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था, जुलपानी हुई नू तारा, इतना सुनाया तो सेकंड लाइन से शम्मी कपूर गाना शुरू कर दिया।
0: शम्मी कपूर क्या, पूरी दुनिया वाइब कर रही थी इस फिल्म के म्यूजिक के साथ और करती है आज तक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आरडी बर्मन स्पेशल।

0: करता है।
1: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans par RD Burman Special. Charu ke saath. Only on

0: हिंदी फिल्म संगीत के सबसे यूनिक म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, इस यूनिक म्यूजिक कंपोजर की फिल्म इंडस्ट्री में दो फिल्म मेकर्स के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन थी। एक तो नासिर हुसैन साहब, जिनके साथ तीसरी मंजिल से इनके सफलता की शुरुआत हुई। ये दूसरे कौन थे, इनके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने क्या शेयर किया था।
1: ग्रुप देखो, एक नासिर साहब के साथ तब से मेरा दम जोड़ हो गया। एक मुझे और एक फकर है कि जैसा शंकर जयकिशन जी थे, काफी लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग था, उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ। एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है, जिसकी पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन, मेरे ख्याल से 65-67 की बात होगी शायद। तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर बनाए, दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर, मैं उन्हीं के साथ हूँ, रमेश बहन, दैट्स अ रिकॉर्ड। ये मेरी लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है।
0: द ट्रेन फिल्म का जिक्र इन्होंने किया। द ट्रेन वही फिल्म है जिसके सुपरहिट गाने का कवर वर्जन बना बना के पब्लिक हटती नहीं है, थकती नहीं है, इतना सुपर फिनोमिनल गाना है वो। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन, सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली ऑन मिर्ची। पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारू के साथ ओनली

0: आरडी बर्मन ना म्यूजिक के लिए ऐसे भूखे प्यासे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसीलिए नए नए तरीके सीखते रहते थे। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या इंसिडेंट शेयर किया था जब म्यूजिक कंपोजर रोशन साहब उनके घर आए थे।
1: तो एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया। ये उन्होंने कहा दादा आपको शायद मालूम नहीं एक बात सीक्रेट, तो उन्होंने गाना किया था रहे ना रहे हम, उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली, मीटर मतलब छंद। तो एक गाना उन्होंने गा के सुनाया, उन्होंने रोशन जी ने

बोले कि आपका ये इतना प्यारा गाना था, देखिए हमने बना ली। ये सब क्या स्कूलिंग है, तब से हमने क्या किया, कोई गाना हिट गाना हो, ये सब गाने के जो मीटर होता है ना, उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते। मिसाल के तौर पर यही गाना देखो, ठंडी हवा का रोशन जी ने बना दिया, रहे ना रहे हम, मैं दूसरा बोल से गाता हूँ, देखो

0: छंद सेम है, सब कुछ वही है, इस तरीके से हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते हैं।
1: सागर फिल्म, ये पूरी एल्बम ही क्या एल्बम थी भाई, एक एक गाना इसका नगीना, और ये वाला जो हम सुनने वाले है ना, ये तो उफ तौबा, ये कोई ऐसा प्यार में पड़ा इंसान नहीं होगा जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ।

0: दो जीनियस लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसी सिचुएशन में कई बार काम करना मुश्किल हो जाता है। एक पुराने इंटरव्यू में आरडी बर्मन ने शेयर किया था कि किनके साथ काम करते करते अक्सर वो काफी अटक जाते थे।
1: एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है, उसका नाम है गुलजार। हम एक पिक्चर कर रहे थे आंधी, आंधी में जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया। तो मैं बोला देखो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर वो बोलने लगे यार तू थोड़ा ट्राई कर यार, कुछ होगा, ये करेंगे वो करेंगे। फिर करते करते हम एक दिन बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा यार उसका मीटर अलग होता है, एकदम मिलता ही नहीं। तो करते करते हट से मैं गा दिया गाना, ट्यून किया। फिर जब ट्यून किया, मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा। अब वो फंसता है, अब वो घर से चले जाता है, सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखना पड़ेगा। फिर फोन करते क्या है यार जो लिखा था, नहीं तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा। फिर वो ध्यान से वो करते रहते, करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है।
0: कुछ ना कुछ भाई बहुत बड़ा कुछ बना के दिया इन दोनों जीनियस बंदों ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इनके कॉम्बिनेशन का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुन लेते हैं, आंधी फिल्म से। दो और जीनियस, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: बाकी के म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे और पंचम ऑब्जेक्ट्स का। मिर्ची सुन रहे हैं आप आरडी बर्मन स्पेशल ऑन पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ऑब्जेक्ट्स लाइक दो ग्लास खड़का दिए, टेबल उठा के बजा दिए, सैंड पेपर से आवाज निकाल ली। इनकी वैरायटी और रेंज इतनी वास्ट थी, इसका कोई और छोर ही नहीं था। मतलब एक तरफ ये बंदा कैबरे सॉन्ग्स बना रहा है, दूसरी तरफ अमर प्रेम जैसी एल्बम। सुनिए इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में एक बार आरडी बर्मन ने पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: अमर प्रेम का तो बहुत, वो भी और एक पिक्चर थी जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। उसमें पिताजी ने भी काम किया। वो क्या था, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे, बहुत पुराने गाना, उनका ही लिखा हुआ बंगाली बोल, मैं सुनाता हूँ। बैला बोए जा, अभी बोल बंगाली में, बैला बोए जा मतलब वक्त गुजरता जाए। बैला बोए जा,
0: रैना बीती जाए, क्या ही खूबसूरत गाना है। सारे गाने इस फिल्म के इतने सुंदर हैं यार। और अभी हम इस फिल्म का वो गाना सुनेंगे जिसको सुन के अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत टेंशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो इसको सुन के हम सोचते हैं छोड़ो ये ना सोचो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे, वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, मैंने नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाऊं। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की।
0: है ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी, जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर आरडी बर्मन स्पेशल, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: का कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल, चारू के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ये तो आपको पता है ना कि आर डी बर्मन अपनी टीनेज से ही अपने फादर एस डी बर्मन साहब को म्यूजिक कॉम्पोजिशन में असिस्ट करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड बकायदा कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट भी दिया गया है, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, गाइड, तीन देवियाँ। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए इन्होंने अपने फादर के बारे में क्या किस्सा शेयर किया था।
1: पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था, वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे और मुझे डांटते थे, यार क्या यार मोटा हो रहा है, चलते नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं। मतलब एक दिन वो आए वापस, आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचम आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की, तारीफ कर रहे कुछ क्या। अरे नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रहे हो। हर रोज मैं सुबह जाता हूँ, वहाँ पे कुछ लोग भी टहलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं, कुछ लड़कियाँ टहलती रहती है, कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि ये देखो एसडी बर्मन जा रहा है, तो मैं मन में सोचता था मेरा फैन है। आज कमाल हो गया हमने, क्या हमने आज बोलने लगा ये देखो आर डी बर्मन का बाप जा रहा है। वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक कमाल का मोमेंट।
0: भाई मम्मियाँ तो अक्सर बच्चों की तारीफों में पुल बांध देती हैं, लेकिन पापा से तारीफ मिलना वाकई लाइफ का प्रेशियस मोमेंट है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ आर डी बर्मन स्पेशल में ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जींस पर आरडी बर्मन स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लाइफ में जब सेटबैक्स आते हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: I was reading जो अपना अंडर 19 इंडियन टीम का कैप्टन था यश धुल,
4: हाँ 2022 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप हमें जिताया था
3: जी। अब आप देखिए एज उन्होंने अपना कितना एफर्ट किया होगा, कितनी मेहनत की होगी और एक मुकाम तक भी पहुंच गए, सफल भी हो गए, एंड सडनली ही स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ फटीक, वेरी टायर्ड, कुडंट परफॉर्म टू हिज कैपेसिटी, उनको लगा फिटनेस की प्रॉब्लम है, और फिर पता चला कि हार्ट के अंदर होल था। अब जब होल था तो फिर एक डिसीजन लेना जरूरी था कि सर्जरी कराएं, सर्जरी के बाद लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट, फिर कमबैक करना किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए और क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति ले लेगा 6 मंथ का गैप, पर एक क्रिकेटर के लिए
4: आपका करियर खत्म हो सकता है,
3: आपका करियर, बिकॉज यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू, अभी आप सीनियर में जाएंगे, आप शायद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। बट ही वॉज वेरी पॉजिटिव, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिकेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फिटनेस है। अगर फिटनेस ही नहीं है और हेल्थ ही नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पर उस मोमेंट पर, उस जर्नी में वो सेटबैक था ना, फिर रुकना, सर्जरी कराना, फिर उन्होंने कहा बहुत जल्दी थी एज अ क्रिकेटर, आपको हो गया 1 महीना, हो गया 6 वीक, हो गया, अब जल्दी होती है कि मैं वापस आऊं। पर जैसे उन्होंने जल्दी करी तो जो बॉडी के फैक्टर्स थे, बीपी थे, वो हिलने लगे, एंड देन अगेन ही हैड टू टॉक टू हिमसेल्फ कि ये जल्दी नहीं हो सकता है, उतना टाइम लगेगा, बॉडी की हीलिंग में लगेगा, फिजिकल प्रिपरेशन में लगेगा, टू गेट बैक लगेगा। लेकिन उन्होंने अभी भी वो चीज नहीं छोड़ी कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है।
4: सही बात।
3: उमंग है, उत्साह है, करेज है, सब कुछ है। तो हो सकता है कि वो जल्दी ही खेलेंगे, ये तो हम सबकी दुआएं हैं। पर जरूरी है कि जिस दिन सफल हो जाएंगे ये सारी स्टोरीज बाहर आने लगेंगी। पर यात्रा में सेटबैक तो है, हार्डशिप तो है, उस मोमेंट में कोलैप्स नहीं होना, उस मोमेंट में उसको पॉजिटिवली लेना, उसको भी पार करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस जर्नी में आज आपके सामने क्या सीन है, ओनली दिस मोमेंट इज रियल, प्ले योर पार्ट वेल।
4: सुपर, वेरी नाइस।
3: मैंने आपने अपना रोल अच्छे से प्ले कर दिया, दैट्स ऑल दैट यू कैन डू।
4: क्या बात,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आइए एक कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: इसे 2026 का वर्ल्ड कप हमने T20 वाला जीता, तो संजू सैमसन के बारे में बहुत बात हो रही है. और जो एक कमाल की बात है कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम, क्योंकि वो न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत खराब खेले और बहुत लोग उन पे प्रश्न उठाने लगे कि इनमें वो बात ही नहीं है, T20 के लिए लायक ही नहीं है एक्सेट्रा. और फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल का कमबैक किया. इनफैक्ट मुझे याद है गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका करियर वॉज ऑन द लाइन एंड ही टुक दैट मोमेंट. तो कहीं ना कहीं सेटबैक से ओवरकम करने वाली स्टोरी आई है कि भैया आप ड्रॉप्ड थे, फिर आप वर्ल्ड कप में आके कमाल करते हैं द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड. आई डोंट नो टू से, ये बहुत इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए.
4: एब्सोल्युटली, इसलिए कई बार कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. और इस केस में तो क्योंकि वर्ड्स आर नॉट ओनली फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, इट्स फ्रॉम एवरीबॉडी. माना जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि सारी दुनिया अगर आपको अप्रिशिएट करती है. सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल, अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ पीपल आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग यू.
3: एब्सोल्युटली,
4: माना जितनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है, जितनी दुआएं आपकी तरफ आती
3: है, बहुत कम होती है.
4: नहीं, जैसे अभी आपने अच्छा परफॉर्म किया
3: तब बहुत सारी आती है,
4: तो आती भी बहुत है. लेकिन जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं
3: तब नेगेटिव तो दुनिया भर भर के आती,
4: वो भी आती है,
3: ज्यादा ही आती,
4: ज्यादा आती है. तो माना दोनों को डील करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है.
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है. हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके. हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा. इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा. प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है. श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फिजिकल प्रेपरेशन के साथ मेंटल प्रेपरेशन भी उतनी ही जरूरी होती है, आइए समझते हैं क्यों।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में समान समान माना उस चीज से आप डिस्टर्ब नहीं हो, वो आपको अफेक्ट नहीं करे। अगर वो आपको अफेक्ट करेगी तो आपके परफॉर्मेंस नीचे जाएंगे। अगर आप उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, अपने को एम्पावर करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, अपने पर फेथ रखेंगे, अपने को और स्ट्रांग बनाएंगे, देन थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। एंड दैट इज व्हाई वी सॉ दैट लिटिल इमेज वेयर यू नो आफ्टर ही फिनिश्ड ही बाउड डाउन।
4: हाँ, और बहुत कमाल में सेमीफाइनल में ईडन गार्डन्स में जब शायद हम फाइनल में नहीं आ पाते, मैच जब खत्म हुआ, he went down and he looked up and he crossed.
3: That is humility, ना?
4: बहुत बढ़िया।
3: वो humility बहुत जरूरी है उस समय पर कि even though उनका hard work है, लेकिन अंदर व्यक्ति को पता होता है कि उससे बाहर निकालने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए थी, जो इनर पावर चाहिए थी, वो ऊपर वाले से आती है। पर उस समय पर उस चीज को याद रखना, उसका ग्रेटिट्यूड फील करना, ओपनली उस चीज को थैंक करना, ये जरूरी है। देखो, फिजिकल प्रेपरेशन एक चीज है, मेंटल प्रेपरेशन दूसरी चीज है। फिजिकल प्रेपरेशन हार्डवर्क से आ सकती है, लेकिन जो मेंटल प्रेपरेशन है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो जितना ऊपर वाले से जुड़ते हैं, जितना उसको याद करते हैं, इससे स्पोर्ट्स की फील्ड में विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, राइट थिंकिंग का बहुत ज्यादा उस चीज का वैल्यू किया जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं है एस्पेक्ट, मेंटली आप टफ नहीं है, तो आप अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर पाते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी गिव अप ना करना और अपना काम करते रहना ही जिंदगी की असली जीत है। आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, T20 वर्ल्ड कप के बाद संजू सैमसन की कहानी देख के मुझे ऐसा लगता है कि पर्सिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सक्सेस आपको डिलेड मिले, थोड़ी बाद में मिले, लेकिन अगर आप लगे रहे ना तो मिलेगी जरूर। और मुझे बहुत कमाल का एक वाक्य याद आ जाता है, डेरेक रेडमंड बोल के एक एथलीट होते थे 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में, किसने 400 मीटर की रेस जीती वो किसी को याद नहीं, और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट सबको याद रहता है। डेरेक रेडमंड उस रेस में लास्ट आए थे क्योंकि वो जब दौड़ने लगे उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, उन्होंने रेस नहीं छोड़ी, वैसे भी उन्होंने पूरी रेस कम्प्लीट करी। और एक बहुत कमाल की लाइन मेरे दिमाग में आती कि व्हेन यू डू नॉट गिव अप यू कैनॉट लूज, तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो रेस कंप्लीट करता है ना जीतता दरअसल वही है। और संजू सैमसन ने भी ये बात पूरी कर दी कि परसिवियरेंस अगर लगे रहे ना तो सक्सेस आएगी, डोंट वरी।
4: अगेन, सक्सेस हर एक के लिए अलग अलग होती है ना। एक सक्सेस होती है आउटर लेवल पर, अब जैसे आप डेरेक रेडमंड की बात कर रहे थे, तो आउटर लेवल पर अगर देखेंगे तो उनको विनर नहीं कहा, पर फिर भी लोगों ने कहा ही इज अ विनर,
3: चैंपियन जिंदगी भर।
4: क्यों विनर है? क्योंकि गिव अप नहीं किया। हम कई बार ये नहीं समझते कि गिव अप न करना भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है
3: जी।
4: तो वो गिव अप न करना, रेस को कंप्लीट करना, ऐसे ही ये एक 400 मीटर की रेस थी। लाइफ में भी तो चैलेंजेस आते हैं,
3: गिव अप नहीं करना,
4: वहां पर भी गिव अप नहीं करना, परसिवियरेंस रखना।
3: Absolutely.
4: देखो, सफलता ऐसे है पेड़ पर जो फल है, फल लास्ट चीज होती है। शुरुआत कहाँ से होती है?
3: बीज से।
4: बीज वो तो दिखाई नहीं देता, हार्डवर्क तो कभी दिखाई नहीं देता, प्रेपरेशन तो दिखाई नहीं देता। बीज के बाद भी आप कितने समय तक पानी डालते रहते हैं, और आपको कई बार थोड़ा सा डाउट भी होता है कि अंदर कुछ हो भी रहा है कि नहीं।
3: हाँ, सही बात।
4: क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर सो हिडन, जो मेन एफर्ट होता है ना वो बहुत हिडन होता है, बहुत गुप्त होता है। वो गुप्त चीज एकदम दुनिया के सामने आती है, पर आप पानी डालते हैं फेथ से। आप सन की लाइट भी है, पानी भी है, पानी वो दृढ़ता का पानी होता है। डेली आप फेथ रख करके उसमें करे जा रहे हैं, फिर धीरे से दो पत्ते निकलते हैं, और जब वो दो पत्ते भी निकलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम। कच्चे पत्ते होते हैं, उसको कोई भी जानवर खा सकता है, यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट।
3: सही बात।
4: लेकिन जब एक दिन वो पेड़ बन जाता है, आपको क्या करना पड़ता है? इतना फल निकल कर आता है कि आप खा नहीं सकते, बट फल इज द रिजल्ट, सफलता। हम फल देखते हैं, पर जरूरी है कि उस फल तक पहुंचने के लिए जो एक जर्नी है, प्रेपरेशन है, मेहनत है, हिडन लेवल पर जो हार्डवर्क है, अगर वो आप करते हैं तो फल तो आना ही है, फल तो बाय प्रोडक्ट है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: साइलेंस कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत है। आइए इस ताकत को समझते हैं और लाइफ में कैसे अप्लाई करें ये जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: T20 वर्ल्ड कप विन के बाद ना बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कमबैक किया, बहुत बार ड्रॉप हुए, वर्ल्ड कप के दौरान ड्रॉप हुए, लेकिन फाइनली अच्छा खेला। अक्षर पटेल उनमें से एक नाम है, संजू सैमसन एक नाम है, ईशान किशन फाइनली प्लेड वेरी वेल, अभिषेक शर्मा ने भी लास्ट मैच में खेल के साबित कर दिया कि हाँ, जो फेथ मुझ में कैप्टन और कोच रख रहे थे उन्होंने उसको पूरा किया। मुझे लगता है कभी कभी कमबैक जो होता है ना उस पे स्पॉटलाइट नहीं होती है, वो बहुत एक साइलेंट जर्नी होती है। तो कमबैक जो है ना वो खामोशी में ही होती है। जब आप ड्रॉप हो जाते हैं बहुत लोग बात करते हैं, उसके बाद कोई आपको याद नहीं रखता। तो जब आप कमबैक करते हैं वो साइलेंस में होती है। उस साइलेंस में आप क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। जब आप पे स्पॉटलाइट बिल्कुल नहीं है तो कभी कभी भगवान हमें शायद आप ये सिखा रहा होता है कि तुम्हारा जो ड्रॉप होना है वो रिजेक्शन नहीं है, ये मौका तुम्हें हम दे रहे हैं कि तुम अब हार्डवर्क करो और वापस आओ, ताकि दुनिया के लिए नहीं तुम अपने आप को बता सको कि तुम में अभी भी क्षमता है।
4: दिस इज द वे यू टेक इट, सी दैट इज व्हाट ना, आप उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। लाइक यू सेड, ये कॉन्वर्सेशन अपने से करनी होती है। एक और चांस है, एक और अपॉर्चुनिटी है, आई नो आई हैव दैट टैलेंट, बस मेहनत करने की जरूरत है, आई विल प्रूव माई सेल्फ। अब आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरा, डिसहार्टन भी हो सकता है
3: जी।
4: आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे क्रिकेट के फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, जिनों को सेटबैक था फिर वो कभी दिखाई नहीं दिए क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट ही नहीं किया, वो नेगेटिव हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, चले गए। और आपको ऐसे भी मिल जाएंगे क्योंकि मेंटली स्ट्रांग थे तो कमबैक कर लिया। दोनों मिलेंगे
3: जी।
4: पर दोनों के सामने सेम सिचुएशन होते हुए दोनों की जो मेंटल प्रिपरेशन थी वो अलग थी। देखने का तरीका, परसीव करने का तरीका, सोचने का तरीका, विजुअलाइज करने का तरीका, एंड दैट यू नो व्हाट यू थिंक शेप्स योर फ्यूचर। है तो कितनी छोटी सी लाइन, बट योर थॉट्स शेप योर फ्यूचर एंड योर वर्ड्स शेप योर रिलेशनशिप्स।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
4: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
5: उसको एक खूबसूरत मोड़ समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
4: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
5: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दे। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
4: उसके भरोसे
5: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योरसेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आती होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करें। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
4: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको
5: मिल नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
4: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
5: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
4: एंड आई मूव ऑन।
5: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है, यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
2: मिर्ची मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज The king of mortgage industry.
3: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
0: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
1: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा। सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा। हम अमेरिका में ताज़ा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं। हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 732-986-6241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: जैसे एक सवाल आया है, ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियां उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है, और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
3: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माना, हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
2: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
3: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
2: कुछ नहीं।
3: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्म इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्म का भी लॉ क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट, जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
2: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती है, क्योंकि शी इज टॉकिंग अबाउट समबडी हू इज, और शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ,
3: अगर आप
2: शी इज अबाउट टू पास ऑन,
3: अगर बिफोर आल्सो, सी व्हाट इज सोल गोइंग टू टेक, अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात।
3: बिफोर ऑल्सो सी वॉट इज सोल गोइंग टू टेक, अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात।
3: आप जब

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर ब्रजेश वडोदरा से लिखते हैं कि नमस्ते, मैं रेडियो मिर्ची और श्रेया दीदी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की ओर कैसे प्रोत्साहित करें? जब हम सतयुग की बात करते हैं तो बच्चे तर्क देते हैं कि मशीन या मेहनत के बिना कुछ भी बनाना संभव नहीं है, तो केवल विचारों से सृष्टि कैसे हो सकती है?
3: देखो, जब हम बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो बच्चों के लेवल पर आकर के करनी चाहिए। पहली बात तो बच्चों के लेवल पर आने का मतलब ये है कि आप अगर चाहेंगे कि वो डेली स्पिरिचुअल क्लास अटेंड करें, हो सकता है शायद वो उतने इंक्लाइंड नहीं हो
2: जी।
3: कुछ दिन पहले मैं एक पेरेंट के साथ मिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के साथ लेकिन 10 मिनट जरूर बैठते हैं।
2: हाँ।
3: कुछ अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं।
2: हाँ।
3: और एक हमारा कॉमन प्रैक्टिस है घर के अंदर कि अब बच्चों को हैप्पी मोमेंट जरूर लिखना है।
2: अरे वाह, क्या
3: वो दोनों स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, हस्बैंड वाइफ, और वो बच्चों को रोज का, बच्चों को भी आदत पड़ गई कि कितने भी थके हुए होंगे, उनके वाइफ सुना रही थी कि वो बच्चे कितने भी थके हुए होंगे
2: लेकिन वो लिखेंगे जरूर।
3: उनको पता है कि पापा ने पूछना ही है। और वो सिंगर है, खरीश मोयल सिंगर है, उनके डॉटर नित्या मोयल एक्टर है, बिजी है, वो लोग परफॉर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके घर का नियम है, ये उनकी पेरेंटिंग है कि रात को आपको अपना हैप्पी मोमेंट आकर लिखना ही है। तो कहते बच्चों के अंदर भी अभी ये कॉन्शियसनेस है सारे दिन के अंदर कि जाकर के कोई हैप्पी मोमेंट लिखना है, तो मोमेंट दिन में होना भी तो चाहिए ना। तो वो दिन भर में अवेयर होते हैं कि मुझे सब कुछ हैप्पीली करना है तो मैं अपने मोमेंट्स के अंदर लिख सकूं। अब वो कल्चर है घर का, तो कल्चर है कि जब आपको लिखना है तो फिर आपको करना भी पड़ेगा। सो दे हैव स्टार्टेड लिविंग देयर लाइव्स विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस,
2: वेरी नाइस,
3: एंड नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू इट। दे लुक फॉरवर्ड कि हम एक दूसरे को बताएं कि हमारे दिन का हैप्पी मोमेंट क्या था। तो बच्चे हैं, बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। सेकंड, आई रिमेम्बर दिस मदर शेयरिंग कि जब भी वो टिफिन पैक करते हैं तो वो एक स्लिप पेपर के ऊपर कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी स्टोरी, कुछ एक अच्छा उसके अंदर लिख कर देते हैं। अब वो जो बच्चा है, नाउ ही लुक्स फॉरवर्ड टू इट, धीरे धीरे, जैसे वो चिकन सूप की हमारी किताबें हुआ करती थी, वो बहुत स्पिरिचुअली एम्पावरिंग होती थी। पर कोई एक स्टोरी अगर आपको पता है कि आपको रोज मिलने वाली है, अब कहते बाकी बच्चे पहले देखते थे टिफिन में क्या आया है,
2: अब वो देखते मेरे टिफिन में क्या आया है,
3: अब वो मेरे में क्या, हाँ, क्या स्टोरी है, उस चीज का सबको इंतजार होता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपको पॉजिटिव बना रही है, कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन, फॉरगिवनेस क्रिएट कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम फिलॉसफी और इन सब चीजों की बात करें, अच्छी अच्छी बातें सुनना, देखना, पढ़ना, उसकी एक आदत पढ़ना, वो स्ट्रांग होंगे। अगर हम कहीं स्पिरिचुअली डीप एस्पेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो हमारी बुद्धि वहां तक डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे अगर एक स्कूल के बच्चे को आप इंजीनियरिंग के क्लास में बिठा दें तो वो जो वहाँ पर सुना रहे हैं वो गलत नहीं है, बच्चे की बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। कहीं स्पिरिचुअल जो बातें होती हैं डीप होती हैं, उसके अंदर तर्क होता है, उसके अंदर रैशनैलिटी होती है, उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है, पर मे बी आई एम नॉट उतना बुद्धि से डेवलप कि उसको समझ सके। अब उसको आप जबरदस्ती उसमें समझाने की कोशिश करेंगे या आर्ग्यू करेंगे तो उनका मन फिर जो अच्छी बातें हैं उससे भी उठ जाता है। इसलिए गो स्लो, जहाँ ए समझना है वहाँ ए समझना है, जहाँ एप्पल समझना है वहाँ एप्पल समझना है। तो ये भी नर्सरी से लेकर इंजीनियरिंग तक एक स्लो प्रोसेस है ना।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना
4: बना
3: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा
4: मिर्ची मुर्गा।
5: हेलो
6: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
5: नहीं, कौन बात कर रहा है?
6: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
5: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
6: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
5: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
6: ओ मेरी बात सुन,
5: कौन बात कौन कर रहा है?
6: ओ महेश।
5: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
6: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
5: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
6: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
5: अरे तो
6: जब डर गया था,
5: तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
6: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
5: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
6: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
5: फिर वही बात को लेकर आ गया?
6: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
5: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
6: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
5: वाली बातें कर रहा है?
6: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
5: मैं महेश हुई नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
6: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
5: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
6: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
5: भाई तू है कौन?
6: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
5: हाँ रॉन्ग नंबर है।
6: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
5: राइट नंबर ले
6: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
5: अरे रॉन्ग नंबर,
6: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
5: चल जा, चल काम कर, चल जा।
7: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
9: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
10: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
15: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
16: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
15: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
17: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
18: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
19: Tera kya hoga, Kalia?
20: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab, mirchi kha.
21: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my sunshine. मैं हूँ प्रिसिला और चलो अब करते हैं सुपर फास्ट टाइम ट्रैवल विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीजा. 1613 में लंदन का फेमस ग्लोब थिएटर लिटरली वेंट अप इन स्मोक. शेक्सपियर का प्ले चल रहा था, कैनन चली और थिएटर ने कहा अच्छा चलता हूँ. फिर 1927 में ह्यूमंस प्रूव्ड कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ लोग नहीं बल्कि एयरप्लेन्स भी कर सकते हैं. द फर्स्ट एवर ट्रांस पैसिफिक फ्लाइट सक्सेसफुली हवाई पहुंची. एंड 1964 में अमेरिका ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, द सिविल राइट्स एक्ट सेनेट से पास हुआ. जंप टू 2007, दुनिया ने कलेक्टिवली बोला हेलो टच स्क्रीन. द फर्स्ट आईफोन वॉज लॉन्च और तब से हम फोन यूज कम, फोन हमें ज्यादा यूज कर रहा है. और इंडिया में आज है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, सेलिब्रेटिंग लेजेंडरी स्टेटिस्टिशियन प्रसन्ता चंद्रा महालनोबिस. अब हिस्ट्री की क्लास खत्म और मिर्चीदार गानों की बौछार शुरू होने वाली है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड इन एंड कीप वाइबिंग विद मी. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
8: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: It's 8:30 AM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Acha, tell me, what's worse than forgetting your wallet at home? It's forgetting someone's name. Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब टाइम है थोड़ी सी बॉलीवुड की गर्मा गर्म टी फैलाने का. So here's the scoop. अक्षय कुमार recently couldn't stop praising the blockbuster success of Sayara. But plot twist ये है कि जब फिल्म के लीड एक्टर्स के नाम लेने की बारी आई तो उनका मेमोरी कार्ड जो है वो बफरिंग मोड पर चला गया. Instead of saying Ahaan Pandey and Anit Padda, अक्षय simply call them the new boy and the new girl. अरे अक्षय सर, इतना भी न्यू मत करो कि आप ओल्ड साउंड करने लग जाओ. वैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी इंपॉर्टेंट मौके पर कोई ना कोई चीज भूल गए हो. कभी कभी स्कूल के फ्रेंड्स के नाम याद नहीं आते हैं, कभी ऑफिस के किसी कॉलीग का नाम 3 बार पूछना पड़ता है और जब फिर भी याद नहीं आता तो उसे हे करके बुलाना पड़ता है. डिफरेंस बस इतना है कि हमारा मोमेंट फैमिली, व्हाट्सएप, ऑफिस, कॉलीग, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक ही रह जाता है. लेकिन अगर मैं सेलिब्रिटी होती तो ये मोमेंट मेरा भी इंटरनेट पर वायरल हो जाता, जैसे कि अक्षय कुमार का हो गया. लेसन ऑफ द डे ये है कि प्रेज करो तो दिल से करो और नाम लेकर करो. तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है बताओ मुझे. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस. डीएम कर सकते हो मुझे तुम डायरेक्टली MIRCHIPRIS पर या फिर व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर. That's 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स चलाती हूँ तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
3: Yeah, Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
4: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
3: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
5: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब सुनते हैं मौसम का हालचाल। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 66 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, क्लाउडी स्काइज के साथ है, लेकिन फील हो रहा है 68 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी कि वेदर जो है वो उस दोस्त की तरह है जो कहता है यार मैं ठीक हूँ लेकिन एक्चुअली ठीक नहीं होता है। गुड न्यूज ये है कि रेन का जीरो चांस है आज। पिछले 24 घंटों में भी जीरो रेन थी और अगले 24 घंटों में भी अम्ब्रेला को पेड लीव दी जा सकती है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सनशाइन जो है फुल ऑन एंट्री मारने वाली है। देखो अभी दोपहर 1 बजे तक सनशाइन जो है फुल एंट्री मारने वाली है। सो अगर मॉर्निंग वॉक पर जाना है, कॉफी रन पे जाना है या फिर क्विक ग्रोसरी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये तुम्हारा VIP विंडो है। लेकिन 1 बजे के बाद क्लाउड्स जो है वो फिर से थोड़ा सा कमबैक करने वाले हैं, कैमियो है उनका, और टेम्परेचर जो है मॉर्निंग में अराउंड 63 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रहने वाला है। फिर आफ्टरनून आते आते इट्स गोना जंप टू 87 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और फिर धीरे धीरे धीरे 89 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। मतलब आज एसी और आइस्ड कॉफी की गहरी दोस्ती तुमसे होने वाली है। और एक इम्पोर्टेंट हेड्स अप, वेंसडे के लिए एक्सट्रीम हीट वॉच इशू किया गया है। सो हाइड्रेट करते रहना, कम से कम एक दिन में 3 लीटर पानी पीना जरूरी है, साथ साथ में अपना SPF 50 ++ सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, और अगर बाहर जाना जरूरी है तो कैप और वाटर बॉटल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर ले जाना, नो कैप। ये याद रखो, फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल नंबर से थोड़ा सा अलग है, यानी कि तुम्हें थोड़ा सा वार्म ज्यादा फील होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेयर के प्लेयर बनो। और फिलहाल लेट मी प्ले सम मिर्ची दैट बैंगर्स फॉर यू। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम एंड एक्स प्रोफाइल्स, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। और जल्दी से व्हाट्सएप का नंबर भी बता दूं, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, दैट्स माय नंबर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey, मेरा नाम है प्रिसिला एंड दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोरान ममदानी ऑफिशियली किक्ड ऑफ आउटडोर पूल सीजन बाय जंपिंग इनटू द पूल वेयरिंग अ बिजनेस सूट। टर्न्स आउट दैट डजंट एक्चुअली मैच द पार्क्स डिपार्टमेंट्स ड्रेस कोड एंड हिज रिस्पांस व्हेन दे सेड वेयर अ सूट आई जस्ट अज्यूम्ड सेफ टू से ही टुक द ड्रेस कोड अ लिटिल टू लिटरली। एंड नंबर 2 पर फ्रॉम इंडिया स्पूने इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू केतन अग्रवाल्स मर्डर पुलिस से एन अक्यूज्ड अलेजेडली स्टेड ऑफ मोबाइल इंटरनेट for nearly 10 hours apparently trying to avoid digital tracking. Investigators say that unusual offline gap has itself become an important part of piecing together the timeline. The investigation is still ongoing. And number 3 for a more serious update, Pakistan carried out overnight strikes in Afghanistan. Afghan officials say civilians, including women and children, were killed or injured. Pakistan says the strikes targeted militants following a recent attack in Karachi. As always, with developing international situations, details continue to emerge. And our thoughts are with all innocent civilians affected. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Mera naam hai Prisila. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Rambala. Murga, murga. La virba la murga. Mirci, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता इस्ता इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तब क्यों आवाज आ रही है? मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अब ये आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले ही किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता.
2: आपने सही कह रहे.
3: हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसे ही बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है
3: आपसे. मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ.
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
8: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ.
9: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
10: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
11: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ.
8: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ.
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
17: Garrett Lane presents Everyday Real Diamonds. Now starting at just $49. Beautiful, versatile diamond designs crafted to shine with you every single day. Because diamonds aren't just for special occasions, they're for your everyday moments too. Celebrate this 4th of July with flat 20% off on diamond jewelry at the Garrett Lane store on Oak Tree Road. Hurry, offer valid only from July 3rd to July 5th.
18: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
19: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Listener mein back to back gana sunega.
2: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब थोड़ी सी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स ने ऐसा माइक ड्रॉप मोमेंट दिया है कि क्रिकेट फैंस जो है ना उसे अभी तक रिप्ले करके देखते जा रहे हैं। सीन इमेजिन करो कि ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में क्राउड को अनाउंस किया गया कि स्टोक्स जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं। पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन, क्लैप्स, इमोशंस एंड फुल ऑन बॉलीवुड के क्लाइमैक्स की तरह सीन हो गया। और बस उससे मेयर 27 सेकंड्स के बाद, हां जी सिर्फ 27 सेकंड्स के बाद, मिस्टर बेन स्टोक्स सेड इमोशनल, बाद में होना, पहले मुझे विकेट लेने दो। उन्होंने जैक फोक्स को आउट कर दिया, एज गया सेकंड स्लिप और हैरी ब्रूक ने कैच पकड़ लिया। ग्राउंड का इमोशन जो है सीधा सेलिब्रेशन मोड में कन्वर्ट हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि कभी कभी बेस्ट रिप्लाई वर्ड्स नहीं बल्कि परफॉर्मेंस होता है, यानी कि तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारे एक्शंस काम करके दिखाते हैं। और स्टोक्स जो है उन्होंने वो रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ 27 सेकंड्स में दे दिया है। मतलब इन शॉर्ट मैं तो ये कहूंगी कि बेन स्टोक्स क्या सीन था यार। कसम से अभी फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्काटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु देव।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: It's 9:30 a.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Tera kya hoga, Kalya?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab... मिर्ची का
15: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। अगर आज यानी कि 29th ऑफ जून को तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो मिर्ची फैमिली की तरफ से तुमको एक झकास हैप्पी बर्थडे। एंड गेस व्हाट, आज तुम्हारे साथ कुछ आइकॉनिक लोगों का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। लेट्स फाइंड आउट हु दे आर। सबसे पहले, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद कॉमेडियन कॉलिन जॉस्ट एंड एक्ट्रेस कमिला मेंडिस। स्पोर्ट्स फैन NBA सुपरस्टार क्वाही लेनर्ड भी आज ही के दिन इस धरती पर आए थे। डांस लवर एडम सिवानी फ्रॉम द स्टेप अप मूवीज भी 29th ऑफ जून के बेबी है। और रेडियो लवर्स के लिए लेजेंडरी रेडियो पर्सनालिटी शालोमन द गॉड का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और बर्थडे का रूल नंबर 1 होता है कैलोरीज डोंट काउंट। रूल नंबर 2 होता है अगर किसी ने पूछा कितने साल के हो गए तो कॉन्फिडेंटली बोलो ओल्ड इनफ टू नो बेटर एंड यंग इनफ टू स्टिल डांस व्हेन माय फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स कम ऑन। एंड अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले तुम्हारे फेवरेट बॉलीवुड बैंगर्स मेरे आने की प्रिसिला के साथ बने रहो। और इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो भी कर लो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
4: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
3: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
4: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49। ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। रब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,200, $4,200 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अपवर्ड ट्रेंड ऊपर चले गए हैं, और इससे पहले और ऊपर जाए आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के, और 9 months में इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। आइए मिलके इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में विद द टीम ऑफ rajjewels.com। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन क्या तुम्हें पता है मुझसे इंस्टाग्राम और एक्स पे तुम बातें कर सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी
3: विवेक जी
2: हाँ जी बताइए
3: विवेक जी मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ विवेक जी आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं
2: ऑफ कोर्स
3: विवेक जी आप इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है सब कुछ है हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है ना सोसाइटी में बातें हो रही थी मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना लोग ले रहे हैं मजे अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की चिल्लम चिल्ला हो रही थी विवेक जी बस मैं ये कह रहा हूँ इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार मतलब हमें लगता ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज ग्लास व्लासेस से क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना और इन सब का काम पता है क्या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ये लेते हैं मजे सारे मजे लेते हैं लेकिन ऐसी बातें करेंगे देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती हमारी भी हुई होगी लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए
2: हाँ ठीक ही कह रहे हो
3: नहीं मैंने तो देखिए मैंने हमदर्दी में कहा है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा मुझे भी कई बार गुस्सा आता है मेरी वाइफ से हो जाती है लेकिन क्या होता है ना ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है अच्छा चलो असर की भी कोई बात नहीं कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है ये सब मजे लेते हैं
2: अब आपको पता ही है हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है एक सोसाइटी वाले इतने अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा वो पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने
3: अच्छा
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है मेरे को समझ नहीं आता हमारा घर है हम जो मर्जी करें
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो बस मैं ध्यान रखता
3: थोड़ा ख्याल रखना मिलते हैं किस दिन हा?
2: हाँ हाँ जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे
3: क्या हुआ क्या था भाभी से यार आपकी बात क्या हो गई थी
2: अरे कुछ नहीं यार
3: नहीं फिर भी क्या मतलब काफी चीखों की आवाज है क्या हुआ क्या था
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की
3: अच्छा अच्छा
2: उस टाइम पे मैं घर आया मैं थोड़ा ड्रंक था उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया
3: अच्छा ये कलेश ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत
3: आप कह रहे हो चिल्लाई चिल्ला के बोला क्या आपको आप बताओ ना मजे आ रहे हैं मेरे को बताओ ना क्या हुआ फिर
2: मजे आ रहे हैं
3: बताओ ना क्या बोला क्या बोला
2: अरे तो मजा आ रहा है फोन करके
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेल बोल रहा हूँ मुर्गा बना रहा था आपके
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
9: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
8: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
9: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
13: I am not going to bed with you ever again.
12: But why? What did I do?
13: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
12: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
13: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
12: Yes, come soon. Honey!
13: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
14: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
15: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना
16: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49 ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे बिकॉज डायमंड्स aren't जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th
17: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
18: Listener MA,
0: बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Raise your hand अगर जानना है तुम्हें कि सितारे तुम्हारे बारे में आज क्या बोल रहे हैं। मैं वो प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज राशि जोन का पहला पार्ट।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज लास्ट मिनट हीरो मत बनो। थोड़ी सी प्लानिंग आज तुमको कल की टेंशन से बचा सकती है। लकी कलर इज कालेट, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, दिल की बात ऑनेस्टली बोलो, तुम्हारी सिंसियरिटी ही आज तुम्हारा बिगेस्ट सुपर पावर बनेगी। टीम भी बोलेगी वी आर विद यू। लकी कलर इज ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, पैसों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है लेकिन सोल्यूशन भी साथ ही आ रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस बेबी। और अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा इतू सा। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, सबको कन्विंस करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी पॉज का बटन भी लाइफ का बटन बन जाता है। थोड़ा सुन भी लो, सिर्फ बोलते मत रहो। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, अगर आज थोड़ा सा स्लो लग रहा है डोंट यू वरी, ये बस इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिग एनर्जी इज लोडिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लकी कलर इज येलो, लकी नंबर इज 1। वर्को यानी कन्या राशि, कॉन्फिडेंस ऑसम है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेस ऑसम होता है। आज स्मार्ट मूव से खेलो, सुपर हीरो मोड भी ऑन कर सकते हो लेकिन बी अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 30। और अब बाकी बचे 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में। तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: नो
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road lo, best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers me, exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Iselin.
13: It's 10:30 AM. Mirchi time check.
14: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
15: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन, आज का दिन कैसा जाने वाला है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन पार्ट टू लेकर आ चुकी हूँ। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, ड्रामा मैग्नेट लोग आज तुम्हारे आसपास हो सकते हैं। रिमोट कंट्रोल नहीं है तो एटलीस्ट अपनी अटेंशन का वॉल्यूम जो है वो कम करो। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, परफेक्ट

अच्छी बात होती है, ऑब्सेशन बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। आज खुद पे थोड़ा सा इजी रहो, प्रोग्रेस भी सेलिब्रेशन डिजर्व करता है। लकी कलर इज मरून, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, दिल बड़ा रखो यार, लेकिन वॉलेट पर सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठा कर रखो। आज खर्च करने से पहले 20 बार सोच लेना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 27। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इमोशंस को प्रेशर कुकर मत बनाओ जी, जो फील कर रहे हो कामली एक्सप्रेस करो। आज ऑनेस्टी इज योर बेस्ट थेरेपी। लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, रिलैक्स मेरी जान, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है और हर मिस्ट्री सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 33। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन, क्रिएटिविटी फुल पावर में है, बस जेलस लोगों की बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा म्यूट दबा दो। आज अपनी स्टोरी का हीरो सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। लकी कलर इज आक्वा, लकी नंबर इज 9। एंड दैट्स द एंड ऑफ राशि जोन पार्ट द्वितीय। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फॉर कनेक्शन, फीडबैक और क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर। अभी फिलहाल मिर्ची दैट बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Tera kya hoga, Kalya?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: सिला, इट्स हॉट।
1: और बस दोस्त, आज की मिर्ची मॉर्निंग्स की सुबह यहाँ पर रैप अप होने वाली है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑफ कोर्स जाने से पहले तुम्हें एक फील गुड स्टोरी जरूर सुनाकर जाऊंगी। यूरोप में हीट वेव ने लोगों का एसी से इमोशनल अटैचमेंट और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जर्मनी में टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है और रात को भी गर्मी लोगों को चैन से सोने नहीं देती है। मुझे इंडिया का नॉस्टैल्जिया हो रहा है। लेकिन बर्लिन पुलिस ने एक मस्त आइडिया निकाला है। जो वाटर स्प्रेइंग ट्रक्स नॉर्मली प्रोटेस्ट हैंडल के लिए यूज होते हैं, उन्हें इस बार लोगों को ठंडा करने के लिए सड़कों पर उतार दिया गया है। सोचो जरा, लोग लाइन लगाकर खुद कह रहे हैं, ऑफिसर इधर भी एक शावर प्लीज। अब ये हुई ना पब्लिक सर्विस विद अ स्प्लैश वाली बात। और अच्छी बात ये है कि अगले कुछ दिनों में बारिश की भी उम्मीद है, तो होपफुली वेदर जो है वो थोड़ा सा चिल मोड में आ जाएगा। वैसे तुम अपने आप को इस हीट में हाइड्रेटेड रखना, सनस्क्रीन लगाना, और अगर चाय पीनी है तो एसी के नीचे बैठकर पीना, क्योंकि जर्मनी नहीं है यहाँ पर तुम्हारे ऊपर पानी की बौछार नहीं होने वाली। और वैसे ये इंडिया भी नहीं है जहाँ पर प्रोटेस्ट्स के ऊपर पानी की बौछार हो जाती है। और ऐसी बात पर मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बकबक तुम्हें पसंद आती है, मॉर्निंग की मस्ती पसंद आती है, तो फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। हाँ, मेरा ही हैंडल है। और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर भी लिख लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: सच बताना, क्या बचपन में आप भी इस बात से कन्विंस थे कि अगर हमने तरबूज का बीज खा लिया तो हमारे पेट में पेड़ उग जाएगा?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on Mirchi. Aur bachpan ke kuch aise myths rahe hain, jo aaj Google Baba clear karte karte thak jaate honge. Kyunki is myth ki reality pata lage, mujhe bhi zyada time nahi hua hai, boss. Ki beej khane se pet mein koi ped nahi ug jata hai. पूरा बचपन मैंने इस डर को सच माना था यार, और बड़े होते होते तो पता लगा कि यार वाटरमेलन के बीज तो उल्टा और अच्छे होते हैं, खाने चाहिए। बट ये एक लौता ऐसा मिथ नहीं था जिसे कि हम फॉलो किया करते थे और जिससे हम डरा करते थे। ऐसे और भी कई मिथ्स हैं जिनकी छांव में हमारा बचपन गुजरा है, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन मिथ्स और कहानियों से पर्दा उठाया जाए। क्या बोलते हो? तो चलो फिर मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
5: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नु हसा हसा के लोटपोट कीता।
6: की कह रहे हो?
5: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
6: की कह रहे हो?
7: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
8: और टिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
5: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: क्या कभी आपने भी घर के कलेश को उल्टी चप्पल से जोड़ने की कोशिश की है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज बचपन के 90s के वो मिथ्स जो हमने जिए हैं और आज तक जीते आ रहे थे, उन्हें मिटाने की मेरी पूरी कोशिश है। ये जो चप्पल है ना, इस चप्पल से हमारी पिटाई होती थी, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन था। लेकिन घर के कलेश से इसका कैसे कनेक्शन था ना, ये तो आज तक नहीं समझ में आया है। जहाँ कहीं उल्टी चप्पल पड़ी होती थी ना, दिल में एक अजीब सा डर होता था कि ओह नो, ये चप्पल आज फिर घर में लड़ाई ना करवा दे। बट जस्ट इमेजिन, लोगों की करनी, उनके डिफरेंसेस को हमारे बड़े बोलते थे, जाओ तेल लेकर आओ, और सारा दोष एक उल्टी चप्पल पर जाता था कि इसकी वजह से लड़ाई हुई है। आप वैसे उल्टी चप्पल वाले आइडिया से बाहर आ गए हो, या खानदानी रियासत की तरह इसे भी अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ, चूज योर राइट। हाँ, मार्केट में बहुत सारे राइट्स हैं, और फिलहाल के लिए तो मिड डे मोहब्बत यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आएगा।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: Inefficient,
6: very complex,
7: clumsy और
8: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना।
11: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
3: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
12: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मेरे घर में कभी न शाम पड़े झाड़ू दिली थी और न आज दिल दी है।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये ट्रॉमा आज भी हैंगओवर की तरह लटक रहा है यार, कि शाम को झाड़ू नहीं देते। सो मच सो दैट कि मुझे पता है कि इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, लेकिन आज भी अगर मैं शाम को झाड़ू लगा देती हूँ ना, तो अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अच्छी खासी मैं इंसान बैठे बैठे ना एकता कपूर की फीमेल लीड के बराबर टेंशन लेने लग जाती हूँ कि हे भगवान, मंदिर का दिया बुझ गया, ये तो अपशगुन हो गया। जबकि लॉजिक तो ये है कि बड़े बूढ़े एक जमाने में ना शाम को घर की सफाई करने से इसीलिए मना किया करते थे, क्योंकि पहले ना हर घर में सनसेट के बाद बिजली नहीं होती थी, और डर ये होता था कि अगर घर की कोई कीमती चीज कचरे में चली गई ना, तो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए सीधा मना ही कर दिया करते थे। DM करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड लेट मी नो, क्या आप आज भी इस बात को फॉलो करते हो? माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 PM Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
5: आपने एक रील स्किप की, एक नया गाना रिलीज हो गया, एक ट्रेलर आ गया, फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, किसी ने कुछ पोस्ट किया, और इसी बीच शायद एक खूबसूरत गाना आपके पास से निकल गया बिना आपके नोटिस किए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कमी नहीं है, अटेंशन की कमी है, और शायद इसलिए आज सबसे मुश्किल काम अच्छा गाना बनाना नहीं, नोटिस किया जाना है। आज मैं बात करने वाला हूं उन गानों की जो भीड़ में अपनी जगह बना रहे हैं, उन सिंगर्स की जिनकी आवाजें आज भी गोल्ड हैं, लेकिन माइक्रोफोन्स कहीं और ही लगे हुए हैं, उन सुपरस्टार्स की जो गायब हैं, और उन आर्टिस्ट की जो एल्गोरिथम को हराकर सीधा आपकी प्लेलिस्ट तक पहुंच गए हैं। हाय, मैं हूं सुरेन, और इस एपिसोड में हम नॉइज नहीं म्यूजिक सुनेंगे। This is India's most definitive Hindi film music countdown, the Mirchi Top 20. And talking of number 20, we've got A.R. Rahman, Irshad Kamil, Vedang Raina aur Nilanjana Ghosh. Ek aisa gana jo pata nahi kyun main har jagah sun raha hoon. This is Mascara from Main Wapas Aunga.
6: Number 20.

What a beautiful song, man. Jagmag Jagmag Jhilmil Jhilmil, Manoj Bajpayee ki incredible film Governor se. Is hafte number 19 par ye debut kar raha hai. And mujhe pura yakeen hai ki jisne bhi abhi ye gana suna hoga, uske chehre par ek muskurahat zarur aayi hogi. Lekin ye bhi utna hi sach hai ki agar ye gana kisi choti film ka hissa na hota, to shayad aaj aur zyada log iske bare mein baat kar rahe hote. और यही हिंदी फिल्म म्यूजिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और सबसे बड़ी सच्चाई है. आजकल गाने डिस्कवर नहीं होते, गाने डिलीवर किए जाते हैं. जो दिखाया जाता है हम वही सुनते हैं, जो प्रमोट किया जाता है हम वही गाते हैं, और जो कहीं पीछे छूट जाता है, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे ढूंढने का वक्त किसी के पास है ही नहीं. ये गाना अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और जावेद साहब ने लिखा है. और मेरी डिक्शनरी में एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब जावेद साहब लिखते हैं ना तो लफ्ज कभी कैजुअल नहीं होते. कुछ महीने पहले उन्होंने 120 बहादुर में भी एक गाना लिखा था जिसे अमित त्रिवेदी ने ही कंपोज किया था, एंड वो गाना मेरे लिए छुपा हुआ हीरा था.

एंड देन आई रियलाइज कि इन दोनों ने सिर्फ 3 एल्बम्स में साथ काम किया है, लेकिन आयशा से लेकर आज तक जब भी साथ किया है कुछ ना कुछ यादगार दिया है।

अरे यार, ये गाना मुझे आज भी कमजोर बना देता है। अजीब बात है ना, छोटी फिल्मों को अच्छे गानों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें सबसे कम सुना जाता है। एंड देन यू गॉट दोस बिग फ्रेंचाइज फिल्म्स जिनमें एक ओके ओके गाना भी पॉपुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 18 पर दिस इज चटनी, फुल भोजपुरी तड़का, एंड ये है धमाल 4 से।

फहीम अब्दुल्ला का सैयारा पिछले साल का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक एंथम था, हैंड्स डाउन, राइट? और इस हफ्ते भी वो नंबर 17 पर मौजूद है। लेकिन इस गाने को सुनते हुए एक ख्याल आया, बॉलीवुड का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्लीशे आखिर क्या है? ये नहीं कि प्यार अधूरा रह जाता है, ये है कि जब दिल टूटता है तो माइक्रोफोन हमेशा लड़के को ही मिलता है। जरा सोचिए ना, चाहे कितना ही पॉपुलर गाना क्यों ना हो।

0: ओ माय गॉड, हर जेनरेशन का डेफिनेटिव हार्ट ब्रेक एंथम। एक आदमी गा रहा है, एक आदमी टूट रहा है, एक आदमी याद कर रहा है, और धीरे धीरे बॉलीवुड ने हमें ये बिलीव करवा दिया कि हार्ट ब्रेक का असली ब्रांड एम्बेसडर मर्द ही होता है। ये बात ही अजीब है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक दो लोगों का होता है, लेकिन गाने में रोता हमेशा एक ही है, इट्स द मैन। इस हफ्ते नंबर 16 पर है ए आर रहमान का वो नहीं फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मोहब्बत के खोने की बात नहीं करता बल्कि किसी अपने को खोने की बात करता है, और शायद इसलिए ये इतना गहरा लगता है। लेकिन आज मुझे उस दूसरी आवाज की बात करनी है, वो लड़की जिसका दिल टूटा है, जो बॉलीवुड में हमेशा थी, बस उसे उतनी बार सेंटर स्टेज नहीं मिला, क्योंकि औरतें भी टूटती हैं, उनका भी दिल टूटता है, उनकी भी नींद उड़ती है, बस उनके दर्द को एंथम कम बनाया जाता है, और जब कभी बनाया जाता है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने पैदा होते हैं। You've heard this song in Ravan, नंदिनी श्रीकर की आवाज, एक ऐसा गाना जो हार्ट ब्रेक को चीख कर नहीं खामोशी से जीता है। थैंक यू विशाल एंड शेखर, हियर इज माय रिवाइंड ट्रैक, दिस इज भरे नैना।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
6: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
7: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
8: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
9: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సోలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
10: తేరా క్యా హోగా కాలియా?
11: సర్దార్, మేనే ఆప్కా నమక్ ఖాయా సర్దార్.
10: అబ్ మిర్చీ ఖా.
12: రేడియో మిర్చీ, ఇట్స్ హాట్.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: धुरंधर का आरी आरी इस हफ्ते नंबर 4 पर है और एक बात माननी पड़ेगी, बॉलीवुड को नॉस्टैल्जिया से बहुत प्यार है। पुराने गाने चाहिए, पुराने हुक्स चाहिए, पुरानी यादें चाहिए, बस पुराने सिंगर्स नहीं चाहिए। सर आज सोचिए, धुरंधर में ये गाना जो आपने अभी सुना आरी आरी, वो है तम्मा तम्मा लोगे है, और साथ में है उदित जी की आवाज में ये वाला गाना। एंड देन हाल ही में यू ऑल्सो हर्ड है जवानी तो इश्क होना है का ये गाना कॉल्ड चुनरी चुनरी, जिसमें ओरिजिनल सिंगर अभिजीत नहीं है।
1: तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए।
0: एंड गेस व्हाट, अगला गाना काउंटडाउन पर है ऊंचा लंबा कद, एक और रिक्रिएशन। एंड मुझे रिक्रिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है, जिन आवाजों ने इन गानों को एवरग्रीन बनाया, फॉरएवर कूल बनाया, वो आवाजें हैं आज कहां हैं? आनंद राज आनंद बेंच पर, अभिजीत भट्टाचार्य बेंच पर, उदित नारायण बेंच पर, रेयरली हर्ड, लेकिन उनके गाने हर दूसरे फ्राइडे को कमबैक कर रहे हैं। बॉलीवुड को गाना याद है, गाने वाला नहीं। और फिर पिछले हफ्ते संडे के दिन इत्तेफाक से एक वीडियो देखा और स्क्रीन पर आए अदनान सामी, और फिर वही गाना जिसके चलते अदनान से प्यार हो गया था।

आवाज है यार, क्या कंट्रोल है, क्या वॉर्मथ है। सबसे बड़ी बात, द सॉन्ग मेक्स यू फील, द सॉन्ग गिव्स यू फील्स। और तब मुझे एक सवाल खटका, व्हाई इज अदनान सामी सिटिंग एट होम? सीरियसली, आज के कितने सिंगर्स हैं जो अदनान सामी के साथ एक स्टूडियो में खड़े होकर कंपीट कर सकते हैं? यार बहुत कम। बॉलीवुड का ये सच में अजीब लॉजिक है, पुरानी आवाजों की लेगेसी कैश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उन आवाजों को माइक्रोफोन नहीं देना है। खैर, जब तक सिंगर्स वापस नहीं आते, उनके गाने तो वापस आते ही रहेंगे, बॉलीवुड छोड़ेगा नहीं। और इस हफ्ते नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल से आनंद राज आनंद साहब का ही गाना ऊंचा लंबा का और एवर। नंबर 3।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: It's 12:30 PM. Mirchi time check.
2: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.

0: मशरू का इस हफ्ते भी नंबर दो पर है यार। मुझे तो लगा था कि ये गाना सीधा नंबर वन तक पहुंच जाएगा इस बार, लेकिन एक बार हम बार बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इंडिया को उसके जासूस बहुत पसंद है और इस वक्त इंडिया का सबसे फेवरेट जासूस स्पाई है हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी, और शायद इसलिए शरारत 19 हफ्ते बाद भी नंबर वन पर बैठा हुआ है। लेकिन स्पाइस की बात निकली है तो 3 जुलाई को दो नए स्पाइस इस लंबी कतार में जुड़ने वाले हैं, आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ। द फिल्म इज कॉल्ड अल्फा, और मुझे लगता है अल्फा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अल्फा खुद नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस टोटली बदल चुकी हैं। अब ट्रेलर में सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ ग्लोब ट्रॉटिंग काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन एंट्रीज काफी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अल्फा का ट्रेलर देखकर मुझे बार बार लगा कि मैं कुछ नया नहीं देख रहा हूं, वही फेमिलियर ट्रोप्स, वही फॉर्मूला, वही टेम्पलेट। यस, बैकग्राउंड स्कोर के कुछ मोमेंट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब एलीट असैसिंस की दुनिया में ऐसा डायलॉग आए कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही तो होती है, तो थ्रेट कम और टेलीविजन सीरियल ज्यादा लगने लगता है। एंड मे बी दैट्स व्हाई मैं अल्फा को अभी जज नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे सिर्फ विश करना चाहता हूं द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट धुरंधर दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। अरे यार, कम से कम ऋतिक रोशन को ही सरप्राइज रहने देते, ट्रेलर में पूरी फिल्म तो वैसी दिखा दी। खैर, जिस पाए ने वो बेंचमार्क सेट किया उसका राज अभी खत्म नहीं हुआ है। जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची, यालीना और हमजा की शादी वाला गाना दिस ए शरारत 19th वीक एट नंबर वन।
1: तूने पर्दा उठाया क्या बात, तू

0: एक और हफ्ता खत्म, कुछ गाने चार्ट्स पर चढ़ गए, कुछ नीचे आ गए और होपफुली कुछ नए ऑब्सेशंस मिल गए। ये था मिर्ची टॉप 20 का लेटेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक नॉइज को कम सुनिए, म्यूजिक को ज्यादा। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 1 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलाम मोहम्मद कासिर नाम के शायर हैं, उनका ये शेर है। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो बढ़िया सी स्माइल दीजिए, उसके बाद ये जो हम गाना सुनने वाले हैं नाइट इन लंदन का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज में, इस गाने का वीडियो देखिए। अगर आपको 60s वाला लंदन देखना है, बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। इनफैक्ट जब मोहम्मद रफी साहब इस गाने की शुरुआत करते हैं ना ओ माई लव से, उससे पहले जो गिटार बज रहा है वो इस गाने के वीडियो में एक नाव पे बैठा गोरा बजा रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी फिल्में जिनकी शूटिंग अब्रॉड में हुई है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म्स इज इवनिंग इन पेरिस। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड द क्रेडिट गोज टू फिल्म के सिनेमाटोग्राफर गोपी कृष्ण, डायरेक्टर शक्ति सामंता को भी क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट ये ना सुनने में आता है कि पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग के लिए शक्ति सामंता सिर्फ 10 लोगों को लेके गए थे, क्योंकि तब पेरिस जाके शूटिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। और ये भी सुनने में आता है कि जो जो लोग इस यूनिट में शामिल थे ना 10 लोग, उनको जो पेमेंट की गई थी वो काफी कम थी। क्या पेरिस घुमा दिया ना, पैसे काहे को मांग रहे हो। अच्छा, इसका जो टाइटल ट्रैक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स का सॉन्ग है। तो कई लोगों के साथ उस टाइम ऐसा हुआ कि जो थिएटर लेट पहुंचे उन्होंने गाना मिस कर दिया, तो उन्होंने दोबारा से मूवी देखी वो गाना देखने के लिए। मस्त पेरिस की गोरियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर साहब इस गाने में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: अजी ऐसा

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
10: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज़ डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
11: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो.

अफ्रीका में हिंद, ये एक फिल्म का नाम है, आपको पता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1939 की ये फिल्म है जिसकी शूटिंग अफ्रीका में हुई थी। तो वैसे अगर आप सोचें तो बाहर अब्रॉड में शूट होने वाली पहली फिल्म इसको माना जाएगा, हिंदी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। फिर 1954 की एक फिल्म नाज भी थी जिसकी शूटिंग अब्रॉड हुई थी, लेकिन जो फिल्म जिसकी शूटिंग एक्सटेंसिवली अब्रॉड हुई थी, यूरोप में हुई थी, वो थी संगम। फिर जिसने बाद में ट्रेंड भी चलाया था बाहर जाके फिल्में शूट करने का, या यू नो वो वाली फिल्में जो आई थी, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंडन, लव इन टोक्यो। इनफैक्ट लव इन टोक्यो में ना आशा पारेख जी ने कुछ हेयर क्लिप्स यूज की थी, उनको बाद में लव इन टोक्यो हेयर क्लिप्स नाम से जाना जाता था। और इस फिल्म के इस गाने के ऑडियो में जापान का फ्लेवर तो है ही, इसके वीडियो में भी है। यस, इसके वीडियो में आपको 1960s का टोक्यो जापान देखने को मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।

0: have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: Inefficient,
2: very complex,
3: clumsy or
4: confusion ही confusion.
1: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
10: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मिड और लेट 60s में ऐसी काफी मूवीज आई थी जो अब्रॉड शूट हुई थी और उनके टाइटल में भी बाहर की सिटीज का नाम था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे लव इन टोक्यो, एन इवनिंग इन पेरिस, नाइट इन लंदन, और ये ट्रेंड एक्चुअली जिस फिल्म ने शुरू किया था ना उसके नाम में किसी बाहर के शहर का नाम नहीं था, लेकिन इसकी शूटिंग काफी एक्सटेंसिवली यूरोप में हुई थी। दिस मूवी वॉज संगम, मतलब 1964 की फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कपल अपने हनीमून के लिए यूरोप जा रहा है, क्या बात है। पर अभी जो हम इसका गाना सुनने वाले हैं वो तो अपना यही ऊटी में ही शूट हुआ था। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग रिटन बाय हसरत जयपुरी, कम्पोज बाय शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पर ये गुल जो खिले थे ये कौन से गुल थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ट्यूलिप्स हैं। तो इस गाने के कुछ हिस्सों की शूटिंग नेदरलैंड्स के लिस्सा शहर के केओकेनहॉफ गार्डन्स में हुई थी ना, जहाँ के ट्यूलिप्स दिखाए गए हैं। भाई दुनिया का ये बहुत ही बड़ा बगीचा है, 32 हेक्टेयर के एरिया में, और कुछ 7 मिलियन फूल यहाँ पे उगाए जाते हैं। इस जगह पे शूट करने का सजेशन यश चोपड़ा साहब को खुद अमिताभ बच्चन साहब ने दिया था, बिकॉज शूट से 1 महीना पहले ही वो वहाँ पे घूम के आए थे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बगीचे। इसी बात पे सुंदर सा गाना सुन लेते हैं यहाँ पे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

पुरानी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डायनामिक वाइब्रेंट मेन फिरोज खान साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बंदे ने हिंदी फिल्मों में फॉर्मूला वन कार रेसिंग इंट्रोड्यूस की थी 1972 की फिल्म अपराध में। जर्मनी में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि द फर्स्ट फिल्म टू गेट शॉट इन अफगानिस्तान वाज खुदा गवाह। नो, पहली हिंदी फिल्म जो अफगानिस्तान में शूट हुई थी वो थी 1974-75 की धर्मात्मा। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए अफगानिस्तान का पट्टा आने से तरसता था। वो वैसे इतनी सुंदर थी यार, ऊपर से उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया था रेशमा इस फिल्म में, वो अलग ही गजब धारा था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
6: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
7: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
8: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
9: బ్యాటింగ్ తో కాఫీ సారే కర్తే హై, విరాట్ ఏక్ హీ హోతా హై.
10: కోహ్లీ గోస్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, కోహ్లీ గోస్ ఔట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్.
9: ఫిల్మో మే విలన్ కో ధోతే తో బహుత్ హై, పర్ బచ్చన్ ఏక్ హీ హోతా హై.
11: ఇసే అప్ని జేబ్ మే రఖ్ లే పీటర్, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है.
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
13: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only.

पुरानी फिल्में और गाने जो फॉरेन लोकेशंस पे शूट हुए, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो 1970 की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, पिक्चराइज डॉन मनोज कुमार एंड सायरा बानू, ये आपको पता है इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शूट हुआ था। अनदर फिल्म 1970 की प्रेम पुजारी, जो कि देवानंद साहब की फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर थी, उसका गाना फूलों के रंग से वॉज शॉट इन स्विट्जरलैंड। इनफैक्ट आप जब ये गाना देखो तो उसमें बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही फेमस होटल ग्रिम्सल होटल भी आपको देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये गाना ही मिल सकता है सुनने को। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची का।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भाई वैसे तो हिंदी फिल्मों में एक्सटेंसिवली फॉरेन लोकेशंस पे शूट करने का ट्रेंड संगम फिल्म ने शुरू किया, लेकिन और भी बहुत सारी फिल्में थी जो उससे पहले फॉरेन लोकेशंस पे शूट हो चुकी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ पे शूटिंग नहीं हुई थी और वो फिल्में चली भी नहीं थी। जैसे 1960 में शम्मी कपूर साहब एंड पद्मिनी की एक फिल्म आई थी सिंगापुर, जिसका एक गाना शूट हुआ था सिंगापुर में। फिर 1962 में हांगकांग नाम की एक फिल्म आई थी और उसमें बकायदा बीच साइड पे एक पार्टी चल रही है उस टाइप का एक गाना है जो हेलन जी पे पिक्चराइज्ड है, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर ऐसा कुछ गाना है वो। चलिए यहाँ पे हम एक और गाना सुनते हैं जहाँ पे दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड का ही जिक्र हो रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

फॉरेन लोकेशंस में शूट हुई हिंदी फिल्में और हिंदी गाने पुराने वाले। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सो वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स जिसके कुछ पार्ट फॉरेन लोकेशन पे शूट हुए थे, ये थी 1960 की फिल्म कॉल्ड बेवकूफ, जिसमें किशोर कुमार एंड माला सिन्हा थे। इसकी कुछ शूटिंग इटली में हुई थी। ऑल्सो माला सिन्हा एंड धर्मेंद्र स्टारर आंखें फिल्म जो थी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी, 1968 की सुपरहिट फिल्म। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग अगर बेरूत में हुई थी तो वो इस फिल्म की। इनफैक्ट इसका जो गाना है दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जिसमें फिल्म के तीन किरदार भिखारी बन के घूम रहे हैं सड़कों पे, वो बेरूत की सड़कें हैं। इस फिल्म की शूटिंग जापान में भी हुई है। बट इसका एक और गाना है जो बहुत सुंदर है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, रवि की कॉम्पोजिशन, लता मंगेशकर की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
4: I enjoy using inefficient and complex software, मामा।
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans with Charu, only on

One of the most iconic Hindi song ever shot on a foreign location is undoubtedly Do Lafzon Ki Hai Dil Ki Kahani. Mirchi sun rahe aap purani jeans par main hu Charu aapke saath. Chalo gaane ki video mein Italy mein Venice mein gondola ride hai bahut sundar hai jisko by the way film ke director Shakti Samanta ne khud shoot kiya hai unke kisi assistant ya cinematographer ne nahi. To video to bahut badhiya hai lekin jis tarah se iske audio mein wahan ki tune wahan ke lyrics ko include kiya gaya hai na that is so beautiful. Hats off to R.D. Burman. आशा भोसले जी का ये उनका गाया हुआ फेवरेट गाना. कमाल तो लिखा ये आनंद बख्शी साहब ने. और आपको पता है इसमें शुरुआत का जो वो लाला लाला वाला वोकल्स है और वो जो इटालियन में गा रहे हैं वो एक्चुअली एक इंडियन ने गाया है. उनका नाम है शरद कुमार. तो सुन लेते हैं दिस ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरु.
8: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना.
9: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. Hurry, offer valid only from July 3rd to July 5th.
10: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: इट्स 3:30 PM. मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भाई यश चोपड़ा साहब ने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को इतना पॉपुलर बना दिया कि ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ही वहाँ पे हिंदी फिल्मों की या गानों की शूटिंग की शुरुआत की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली हिंदी फिल्म जिसकी स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई थी वो थी 1964 की संगम। यश चोपड़ा साहब की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी वो थी 1985 की फासले। बट जिस फिल्म से यश चोपड़ा वाला स्विट्जरलैंड पॉपुलर हुआ वो थी 1989 की चांदनी। और इस पर्टिकुलर गाने को जो शूट किया यश चोपड़ा साहब ने, ये वादियों में बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के जो सारी की सारी ये लेगेसी जो है इसकी शुरुआत इसी फिल्म से तो हुई थी। श्रीदेवी ने जो साड़ियां पहनी है वो क्या लगी है भाई, कमाल है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, मंडे की मॉर्निंग और मंडे की इवनिंग दोनों बिल्कुल अलग लोग होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वो इसीलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग में ना हम अलार्म से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कॉफी भी काम जैसी लगती है और इनबॉक्स देख कर तो लगता है कि अरे रे, वीकेंड इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। लेकिन मंडे की शाम तक पिक्चर थोड़ी सेटल हो जाती है, मीटिंग्स हो चुकी होती है, ईमेल्स का शौक भी निकल चुका होता है और अब बस घर पहुंचने की रेस चल रही होती है। और मुझे ना इसीलिए मंडे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये वीकेंड और नए हफ्ते के बीच का वो प्यारा सा हैंडशेक होता है, एक रिमाइंडर होता है कि चलो एक और नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज ड्राइव थोड़ी आराम से कीजिए, प्लेलिस्ट थोड़ी लाउड रखिए और स्माइल करना मत भूलिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मंडे की शाम को रिलैक्स करने के लिए आपका बॉलीवुड गो टू सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा बॉलीवुड गो टू सॉन्ग ये रहा आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana. Rabana. Burga, Burga. La vieja la Burga. Mirchi, Burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तो नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहा, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है? नहीं।
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ
2: राइट नंबर ले
3: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे यार, बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल जा।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Beep cow to jano.
11: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

दोस्तों कभी कभी कैलेंडर भी ना प्यारा सा सरप्राइज दे देता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज तो वैसे मंडे है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ ना तो इस बार वाला मंडे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि दिमाग को पता है कि इस हफ्ते के एंड में सिर्फ सैटरडे संडे नहीं, 4th of July का लॉन्ग वीकेंड भी खड़ा है। जी हाँ, और बस इतनी सी बात ना पूरे हफ्ते का मूड हल्का कर देती है, क्योंकि ऑफिस तो वही होता है, मीटिंग्स भी वही होती है, ट्रैफिक भी वही है, लेकिन पेशेंस थोड़ा ज्यादा है, कॉफी भी थोड़ी बेटर लग रही है। और शायद इसीलिए, क्योंकि हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं एक काउंटडाउन क्वाइटली शुरू हो चुका है। कोई बारबेक्यू प्लान कर रहा है, कोई रोड ट्रिप, कोई फैमिली के साथ टाइम, और कोई बस 2 दिन बिना अलार्म के सोना चाहता है। जी हाँ, मैं उन्हीं में से हूँ। और मुझे तो लगता है कि एंटिसिपेशन भी ना एक हैप्पीनेस ही होती है, क्योंकि कभी कभी वेकेशन से पहले वाला एक्साइटमेंट वेकेशन से भी ज्यादा मजेदार होता है। और वैसे सच बताइए, क्या आप आज फिजिकली ऑफिस में थे या मेंटली ऑलरेडी लॉन्ग वीकेंड पे निकल चुके थे? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर निकल ही चुके थे तो दिमाग में कौन सा गाना बजा रहे थे वो भी बताना, क्योंकि मेरे दिमाग में जो गाना बज रहा है वो ये रहा आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
10: Garrett Lane presents Everyday Real Diamonds. Now starting at just $49. Beautiful, versatile diamond designs crafted to shine with you every single day. Because diamonds aren't just for special occasions, they're for your everyday moments too. Celebrate this 4th of July with flat 20% off on diamond jewelry at the Garrett Lane store on Oak Tree Road. Hurry, offer valid only from July 3rd to July 5th.
11: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots par aane wala kal ek ho jate hain.
10: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
11: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyo purani ada, bringing a global community back to its home.
10: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों, सीक्वल्स तब बनते हैं जब ओरिजिनल की यादें ना लोगों के दिल से जाती नहीं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो कॉकटेल को रिलीज हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी उसके गाने जब भी बजते हैं ना, लोग एकदम से उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब कॉकटेल 2 की रिलीज के साथ वही फीलिंग फिर से आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉकटेल 2 ना बिल्कुल भी पहली कॉकटेल जैसी नहीं है। मतलब दुनिया वही है, इमोशन वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल नया है, कहानी नई है, अंदाज नया है, एकदम नए अवतार में। और शायद जिंदगी में भी ना हम सबको यही बात पसंद है, पुरानी चीजें लेकिन नए अवतार में। क्योंकि जब कोई पुरानी पसंदीदा चीज एक नए रूप में वापस आ जाती है ना, तो उसका नया अवतार, नया वर्जन देखने में ना वही मजा आता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग आजकल अपनी पुरानी चीजों को भी ना एक नए अवतार में देखना पसंद कर रहे हैं। और इसी थॉट के साथ तनिष्क भी लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, यानी आप अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी विच इज अबाउट 9 कैरेट बॉट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स लेकर जा सकते हो तनिष्क के पास फॉर फुल वैल्यू एंड विद 0 deduction. And you'll also get an additional $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. तो आज ही विजिट कीजिए तनिष्क न्यू जर्सी एट 1429 ओक ट्री रोड इजलिन और अपने ओल्ड ज्वेलरी को दीजिए एक नया अवतार। और अब देखते हैं कॉकटेल 2 अपने म्यूजिक के साथ कितनी नई यादें बनाता है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट कॉकटेल 2 सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा फेवरेट गाना बजाते हैं अभी राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: शाम शानदार, let's do not donkey, have a funky time।
2: दोस्तों, कभी नोटिस किया है, लॉन्ग वीकेंड का असली मजा कभी कभी वीकेंड में नहीं, उसके पहले वाले पूरे हफ्ते में होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, अचानक एक्टिव हो जाते हैं कि यार कितने बजे निकलना है, क्या लेके आना है, वेदर चेक किया है या नहीं। और हर दूसरे इंसान की वही लाइन होती है कि यार अभी तक डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करते हैं। मजे की बात तो ये है कि आधे से ज्यादा प्लान्स ना चेंज हो जाते हैं, कभी कभार कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन उन प्लान्स के बारे में बात करने का मजा कभी कैंसिल नहीं होता। और शायद इसीलिए हॉलीडेज हमें सिर्फ ब्रेक नहीं देते, वो हमें किसी चीज का इंतजार करना भी सिखाते हैं। तो अगर आज ड्राइव करते वक्त आप भी अपने शॉटगन के साथ 4th of July के प्लान्स डिस्कस कर रहे हो, तो एंजॉय दैट कॉन्वर्जेशन, क्योंकि हो सकता है कुछ साल बाद ट्रिप याद रहे ना याद रहे, लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है ना, वो हमेशा याद होती है। और मुझे जरूर बताइए कि इस लॉन्ग वीकेंड का सबसे पहला प्लान आपका क्या है, रोड ट्रिप, फायर वर्क्स, फैमिली डिनर, या बस घर पे फुल ऑन रिलैक्सेशन। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि हर प्लान के लिए एक गाना हमेशा होता है। तो चलिए बजाते हैं ऐसा ही एक गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आपके लिए, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: talking now. This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar, let's do
1: not donkey, have a funky time. कभी कभी फेस्टिवल्स हमें सिर्फ सेलिब्रेट करना नहीं, कुछ याद भी दिलाने आते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसा ही खूबसूरत फेस्टिवल है। जी हाँ, आज है वट पूर्णिमा, यानी इस दिन शादीशुदा महिलाएं वट यानी बैनियन ट्री की पूजा करती है और सावित्री सत्यवान की कहानी को याद करते हुए अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। वैसे तो हम सब ने करवा चौथ के बारे में सुना ही है, तो वट पूर्णिमा भी उतना ही खूबसूरत है। एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है जिसमें साथ निभाना और एक दूसरे के लिए खड़े रहने की भावना को सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे तो लगता है यार, इन फेस्टिवल्स की सबसे प्यारी बात उनका मैसेज होता है कि कोई भी रिश्ता ना सिर्फ एक दिन या एक व्रत से मजबूत नहीं होता, वो रोज के उन छोटे छोटे मोमेंट से बनता है। जब हम एक दूसरे को पूछते हैं कि ठीक से पहुंच गए, खाना खा लिया, यार मैं तो वेट कर रहा हूं, जल्दी आ जाओ, चाय बना दूं तो कभी कभी प्यार ना इतना सिंपल होता है। और शायद इसीलिए वट पूर्णिमा हो या करवा चौथ, ऐसे फेस्टिवल्स ना हमें एक बार फिर से उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना सिखाते हैं जिनके साथ जिंदगी का सफर थोड़ा आसान, थोड़ा खुश और थोड़ा खूबसूरत लगता है। तो आज किसी गिफ्ट या स्पेशल ओकेजन का वेट मत कीजिए, बस उन इंसान को मैसेज कर दीजिए जिनके साथ ना जिंदगी थोड़ी बेटर लगती है। और जो लोग आज वट पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे जरूर बताइए विच इज दैट वन बॉलीवुड सॉन्ग दैट यू वॉन्ट टू डेडिकेट फॉर योर स्पेशल वन। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
2: ऑफ कोर्स
3: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना. लेकिन देखो, मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नजरअंदाज करा. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मजे. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाजें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज, ग्लास व्लासे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाजा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने, लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
2: ठीक ही कह रहे हो.
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है. लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है. एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता हूँ.
3: थोड़ा ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
3: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार.
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेस की.
3: अच्छा अच्छा.
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
12: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओह मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता.
13: की कह रहे हो?
12: ओह मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
13: की कह रहे हो?
14: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
15: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया.
12: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है.
16: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
17: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू. सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड. हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
18: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
19: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
0: తేరా క్యా హోగా కాలియా?
4: సర్దార్, మేనే ఆప్కా నమక్ ఖాయా సర్దార్.
0: అబ్ మిర్చి ఖా.
13: Radio Mirchi. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
1: જય ગુરુદેવ. ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર પિસ્કેટવે આપને અને આપના પરિવારને ગુરુ પૂર્ણિમા અને રુદ્રાભિષેક મહોત્સવમાં સ્નેહભર્યું આમંત્રણ આપે છે. શનિવાર 1 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે શિવજી રુદ્રાભિષેક અને સાંજે 5 વાગે વિરાટ દીપ યજ્ઞ. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ. 7323578200. જય ગુરુ.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
8: Moral of the story? Number one, सिर्फ एक ही होता है.
11: एक ही होता है.
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
12: It's 5:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Sham shardar. Let's do not donkey have a funky time.
14: दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि. और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियां चल रही होंगी. किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चे को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है. सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं. और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफरों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है. तो अगर आज मिर्ची आपके सफर का हिस्सा बनी है तो मुझे जरूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो. टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं. तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद

शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार, ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हार्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time.
2: जून फुल मून सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन उसी चांद को अगर स्ट्रॉबेरी मून कह दिया जाए तो अचानक उसमें एक अलग ही मैजिक होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे मून स्ट्रॉबेरी जैसा पिंक तो नहीं होता, लेकिन ये नाम नॉर्थ अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स ने इस दिन को दिया है क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग का सीजन भी शुरू होता है। लेकिन देखिए ना, एक खूबसूरत नाम ने कितने सारे लोगों को आज रात आसमान की तरफ देखने की एक वजह दी है, और शायद इसलिए मुझे लगता है कि कुछ नाम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते, वो इमेजिनेशन भी क्रिएट करते। जैसे कि गोल्डन आवर सुनते ही शाम और भी सिनेमैटिक लगने लगती है, ब्लू लगून सुनते ही पानी और ड्रीमी लगने लगता है, और चेरी ब्लॉसम सुनते ही फूल से फूल नहीं पूरा एक पोस्ट कार्ड दिमाग में बन जाता है। तो आज की रात स्ट्रॉबेरी मून भी उन्हीं खूबसूरत नामों में से एक है। तो आज रात अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए और स्ट्रॉबेरी मून को एंजॉय कीजिए। और मुझे जरूर बताइए कि खूबसूरत चांद को देख के वो कौन सा गाना है जो आपके दिल में इंस्टेंटली आता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि यार खूबसूरत चांद को देख के मेरे दिल में तो ये गाना आता है। चलिए बजाते हैं उसे राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो विपिन,
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई तू इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो कर, मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता है पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है? आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था।
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी।
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से, अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कह दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
2: जाना जरूरी है?
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई।
3: अच्छा तो दुबई जाना है?
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
3: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
2: ठीक है ठीक है,
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था।
2: आपने कब से कह रहे
3: हैं? हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ।
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत। ठीक है मैं रखता हूँ।
2: करवा देना भी है
3: आपसे। मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
2: सॉरी सॉरी सॉरी।
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
2: ओके ओके,
3: आई लव यू।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
9: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarti to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
8: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
9: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
10: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
11: की कह रहे हो?
10: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
11: की कह रहे हो?
12: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
11: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
10: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
15: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
16: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयर फॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th of July विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th.
17: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
18: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
0: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
20: मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शाम तक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका गोल्डन आवर में। दोस्तों देखिए, आज है जून 29 और जून खत्म होते होते यार जो वेदर है वो तो बेटर होते जा रहा है, बेटर क्या हॉटर होते जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो गोल्ड मार्केट है वो भी काफी सरप्राइजेस दिए जा रहा है। तो चलिए बुलाते हैं आज के गोल्ड डिकोडर सीरीज में हमारे गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। नमस्ते बॉबी जी।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। और देखिए, वेदर कितना भी हॉट हो लेकिन गोल्ड आपके 100% फेवर में है। सिद्धि जी, अगर मार्केट रिव्यू की बात की जाए ना, जून के महीने में जब जून का मंथ शुरू हुआ था, सबके हॉलीडेज ग्रेजुएशंस के साथ साथ वेदर तो ऊपर जाता ही है और एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड भी ऊपर जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होते होते थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जून 2 इसी साल की 2026 की बात की जाए तो गोल्ड $4,500 $4,500 पर ट्राई ऑन ट्रेड कर रहा था। मुझे आपका याद है सिद्धि जी वो डायलॉग, OMG, जी। ओ माय गॉड जी, मम्मी याद आ गई थी सोना खरीदने के नाम पे, जब मम्मी ने खरीदा था शायद वही मौका वापस मिल रहा है। आज गोल्ड $4,015,
0: क्या बात है,
1: 10% गोल्ड के प्राइसेस एक महीने में नीचे आए हैं। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, वी कैन नेवर बाय एट द लोवेस्ट एंड सेल एट द हाईएस्ट, मैं हमेशा बोलता आया हूँ। अगर लोगों को लगेगा कि अभी और भी नीचे जाने वाला है तो शायद कोई संभावना होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब वो नीचे जाएगा तो आप खरीद पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, सो मुझे लगता है कि गोल्ड में करेक्शन आई है, एंट्री पॉइंट बनता है $4,015 पर ट्राई ऑन्स। आज गोल्ड का प्राइस बैठता है जिसके अंदर आप 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी हो, कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, नेचुरल सर्टिफाइड कलरलेस डायमंड ज्वेलरी जो 18 कैरेट गोल्ड में स्टडीड होती है, तो 22 कैरेट गोल्ड हो, 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी हो, आप राज ज्वेल्स के साथ 0% में 9 मंथ की फाइनेंसिंग में गोल्ड का प्राइस आज लॉक कर सकते हैं और ज्वेलरी घर लेके जा सकते हैं आज के प्राइस में, और 9 महीने तक पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के। तो देखिए, मुझे मेरी ये सलाह है कि हर एक बार प्राइस करेक्शन के अंदर एंट्री पॉइंट बनता है, तो हमारे डॉलर्स में ज्यादा से ज्यादा सोना साथ आ सके उसके लिए राज ज्वेल्स कमिटेड है कि आप आइए आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके हमारी फाइनेंसिंग ऑप्शन को यूज करें, और 9 महीने में अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ भी जाए तो आपको उससे फायदा हो, नुकसान नहीं हो। राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करने के लिए आइए लॉग इन करें RajJewels.com पर। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, मौका है, दस्तूर है, गोल्ड के रेट 5,500 के पीक पर जाकर आज 4,000 पर फ्लोटिंग है। बॉबी जी ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि एंट्री पॉइंट तो डेफिनेटली बनता है और वेडिंग सीजन भी फुल स्विंग में है, तो बिल्कुल भी मत चूकिए, आज ही विजिट कीजिए RajJewels.com क्योंकि कई सारे ऑफर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: What, Chumka?
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Welcome to the 46th North American Bengali Conference, hosted by the Cultural Association of Bengal. New York mein ek aisa grand sangam, jahan hamari roots aur aane wala kal ek ho jate hain.
6: From the profound classical magic of Amjad Ali Khan and Kaushiki Chakrabarty to the legendary global beats of Vishal Shekhar.
5: Cinema, literature, timeless theatre aur hamari sadiyon purani ada, bringing a global community back to its home.
6: July 3rd to 5th at Westchester County Center, New York. Register now at nabcap.com.
7: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
8: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सूजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं, टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है।
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना

0: रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां ली पंग होगी।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना मतलब इतना ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाले किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपरहिट एल्बम का सुपरहिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विद अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: nel cibo.
1: Iscabana, buscabana, sacabana. Rabbana. Burga, burga. La virgola, la burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है।
2: अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात सुन।
2: कौन बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा
3: है क्या? मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा हूँ राइट नंबर ले, ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू,
2: चल जा,
4: चल। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: नो
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
13: जिंदगी का सबसे खास रिश्ता हम खुद से रोज निभाते हैं, तो फिर अपनी चमक को तिजोरी में क्यों छुपाना?
14: कैरेट लेन प्रेजेंट्स एवरीडे रियल डायमंड्स, नाउ स्टार्टिंग एट जस्ट $49. ब्यूटीफुल वर्सेटाइल डायमंड डिजाइंस क्राफ्टेड टू शाइन विद यू एवरी सिंगल डे, बिकॉज डायमंड्स आरंट जस्ट फॉर स्पेशल ओकेजंस, देयरफॉर योर एवरीडे मोमेंट्स टू। सेलिब्रेट दिस 4th ऑफ जुलाई विद फ्लैट 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी एट द कैरेट लेन स्टोर ऑन ओक ट्री रोड। हरी ऑफर वैलिड ओनली फ्रॉम जुलाई 3rd टू जुलाई 5th।
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Listener MA, back to back gana sunega.
18: Back to back gana sunega.
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफर को दो नजरियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है। वो बजाते हैं यहाँ पर, फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली, इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस, और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और बजाते हैं वो गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा राइट on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
4: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।